0: मैं कर्मों का त्याग देने का नाम संन्यास, ऐसा कुछ लोग कहते, कवि लोग कहते। सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्याग विचक्षण, विद्वान लोग कहते सर्व कर्म फल त्याग देना चाहिए, है ना। सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षण, इसको त्याग कहते विद्वान लोग। आगे चल करके भगवान बोलते यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। तीन बातें याद रखना, यज्ञ दान तप, ये तीनों जो है ना, त्याग नहीं करना, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, ये त्याज्य नहीं है, या नहीं है, त्याग करने लायक नहीं है। यज्ञ दान तप कर्म क्यों, यज्ञ दान तप कर्म पावनानी मनीषिण, पवित्र करने वाला है, आनी बात। तो कहते यज्ञ दान तप करने से क्या होगा, पवित्र होगा। यह इस बात को बतला रहा है, देखो पहले क्या करना चाहिए, यज्ञ अनुष्ठानम, उस यज्ञ भी कैसा है, श्रोत यज्ञ स्मार्त यज्ञ पूर्त यज्ञ इष्ट पूर्त मन्यमाना वरिष्ठम, इष्ट कर्म और पूर्त कर्म, श्रोत यज्ञ स्मार्त यज्ञ ये है। तो यज्ञादि अनुष्ठानम करोगे इससे क्या होगा, यज्ञादि अनुष्ठान है ना, परंपरा साधन है, परंपरा साधन है। इसके बाद कहते प्राणायाम आदि ततः कुरिया, यज्ञदान आदि किया, इसके बाद में प्राणायाम, आदि शब्द से लेना प्राणायाम, प्रत्याह धारणा ध्यान समाधि जो भी है साधन, यज्ञानुष्ठान योगानुष्ठान तथा समाधि ही, इसके बाद तो समाधि आएगा। समाधि तथा वाक्यार्थ ज्ञानम, इसके बाद में वाक्यार्थ ज्ञान, वाक्यार्थ माने तत्त्वमस्यादि महावाक्यों का ज्ञान का विचार, तत्त्वमस्यादि महावाक्य का विचार, वाक्यार्थ ज्ञान। आपने गुरु के पास गए, अंतकरण शुद्ध करके गुरु जी से कहा को हम कथमिदम जातम कर्ताश्य को विद्य थे, मैं कौन हूं, इस जगत कहां से आया, इसका कर्ता कौन है, ये कहां कैसे स्थित है, ये सब बात जब गुरु से प्रश्न करोगे तो गुरु उन सब प्रश्नों का उत्तर देते हुए तुमको महावाक्य का उपदेश करेगा। मैं क्या समाने तत्त्वमस्यादि महावाक्यों का विचार, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में आप लोग सुना कि नहीं, भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरम उपसर आदि भगवो ब्रह्म इति, भृगुर्वै वारुणी वरुण का पुत्र जो वारुणी है, भृगु है भृगु, वो पिता वरुण के पास जाकर के प्रश्न किया आदि भगवो ब्रह्म इति, ब्रह्म का उपदेश कीजिए, और पिता ने कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्म इति, तपस्या के द्वारा ब्रह्म को जानने का कोशिश करो तब ही ब्रह्म है। ब्रह्म क्या से जाए, तप है, तप का अर्थ यहां नाक दबा करके आंख बंद करके बैठे रहने का नाम तप नहीं है, वो तप नहीं है यहां, तपो नामो विचार, आनी बार विधान वाक्यों का विचार। तो पर जो चला गया जा करके विचार किया, विचार करके उसने अन्न को ब्रह्म के रूप में जाना, अन्नम ब्रह्म, अन्नादि खुलेमाने भूतानि जायन्ते अन्ने न जातानि जीवन्ते अन्नम पयन्ति अन्नम अभिविशन्ति अन्नम ब्रह्म इति, अन्न को ब्रह्म के रूप में जाना। परंतु उसको मन में संतोष नहीं हुआ, ये अन्न तो सड़ने करने वाला है, अन्न जो है ना जड़ है, अन्न कैसे ब्रह्म होगा। तो फिर पिता के पास आया, पिता ने कहा क्यों शांति मिली, ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मा को जान लिया। बोले नहीं पिताजी नहीं, न मैं ब्रह्म को जाना न शांति मिली हाँ? न हमारा संशय मिटा है। तो पिता ने कहा जाओ तपस्या करो, तप के द्वारा ब्रह्म को जानो, हमेशा एक ही बात है, तपसा ब्रह्म जिज्ञासा स्व तपो ब्रह्म थी, तभी ब्रह्म है। आखिर में होते होते होते होते कहाँ चला गया, तस्मात बाह्य तस्मात अन्नमयात अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय, तस्मात बाह्य तस्मात प्राणमयात अन्यो अंतर आत्मा मनमय, तस्मात बाह्य तस्मात मनमयात अन्यो अंतर आत्मा विज्ञानमय, तस्मात बाह्य तस्मात विज्ञानमयात अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय। आनंदादि खोड़ माने भूताने जायन्ते आनंदेन जाताने जीवंती आनंदम बहंती अभिष्ट आनंदम ब्रह्म। तो वहां पहुंचा आनंदमय कोश आनी बात आनंदमय कोश। तो इसी प्रकार कहते हैं गुरु जो है ना शिष्य को ब्रह्म का उपदेश करते। तो पहले जगत अनादि के द्वारा अंतकरण शुद्ध हुआ, योग के द्वारा चित्तवृत्ति को शांत कर दिया, तुमने शांत कर दिया, योग अभ्यास के द्वारा क्या किया प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के द्वारा हाँ चित्तवृत्ति को शांत किया, योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय, जो कि अंगों का अनुष्ठान करने पर अंतकरण की शुद्धि होती है, अशुद्धि क्षय, अशुद्धि समझते ना जो चित्त में राग द्वेष आदि का अशुद्धि रहते, क्लेश कर्म विपाक आशय आदि रहता है, ये सब मिट जाता है, शांत हो जाता। तो दुगांगा अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय, हाँ अशुद्धि क्षय हो गया, प्राणायाम आदि के द्वारा चित्त शांत हो गया, विक्षिप्त निवृत्त हो गया, शांत हो गया। फिर इसके बाद में समाधि आया, समाधि समझते ना निद्रा समाधि स्थिति, सो गया तो समाधि लग गई कि नहीं, किसको सोने के बाद समाधि नहीं लगती है, गोली खानी पड़ती है, आनी बात निद्रा समाधि स्थिति। तो निद्रा को समाधि मान लेना बात दूसरी है, समाधि अति अस्मिनिति समाधि, जिसमें समाधि जिसमें चित्त के तमाम वृत्तियां एक साथ निवृत्त हो जाता है मिट जाता है। तो चित्त की वृत्तियां कितनी है या तीन समझ लेना, सात्विक राजसिक तामसिक। क्यों समाधि वृत्ति निरोध का नाम समाधि है, चित्त वृत्ति निरोधा योग है, योग समाधि ही, योग का अर्थ कर दिया समाधि। तो योग समाधि यदि करोगे तो तुम्हारा सात्विक वृत्ति जब रहेगा तो तामसिक का राजसिक वृत्ति की निवृत्ति रहेगी, तो उस अवस्था में भी योग कहा जाएगा, अन्य बात। अथवा रजोवृत्ति आ गई, तामसिक का सात्विक वृत्ति दबी हुए हैं, तो उस अवस्था को भी समाधि कहा जाएगा। तो वृत्ति निरोध तो है ही है, एक वृत्ति तो निरोध है कि नहीं, वृत्ति निरोध का दो है ना, सत्य वृत्ति है, तो रजो और तम वृत्ति का निरोध हो गया, तो उस अवस्था को तुम क्या बोलोगे समाधि। तो वृत्ति निरोध समाधि यदि कहोगे तो एक वृत्ति जाग रहा है, कैसे होगा समाधि। इसीलिए वहां अर्थ किया वृत्ति निरोध का मतलब होता है सभी प्रकार के वृत्ति इस अवस्था में निरोध हो जाता है, उस अवस्था का नाम समाधि। समाधियति अस्मिन् वृत्तये इति समाधि, जिस अवस्था में समस्त वृत्तियां निरोध हो जाता है उस अवस्था का नाम समाधि हो गया। धन्यवाद, ये बता रहे। समस्ततो वैक्यात ज्ञानम, समाधि हो गया। अब सवाल यह है, जब समाधि में रहेगा तो वाक्यार्थ का ज्ञान कैसे होगा? आप समाधि में बैठ गए, समाधि में बैठने के बाद में तो तत्त्वमसी महावाक्य का उपदेश कैसे सुनोगे? और सुनोगे नहीं, विचार कैसे करोगे? क्योंकि वाक्यार्थ विचारे न जायते ज्ञानम उत्तमम। वाक्य के अर्थ के विचार से, वाक्यार्थ विचारे न जायते ज्ञानम उत्तमम। वाक्यार्थ मतलब महावाक्य, वही वाक्य नहीं है घट मानय पट मानय मठ मानय, ऐसा ये भी वाक्य है। ये वाक्य के अर्थ से ज्ञान तो सामान्य है, परंतु वाक्यार्थ तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थ के विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है। येन सद्य विमुच्यते है, जिसके द्वारा सद्य माने उस समय में ही, जिस समय में तुमने वाक्यार्थ ज्ञान प्राप्त किया उस समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कालांतर में मुक्ति नहीं। देखो वेदांत की विशेषता है, कर्म से मुक्ति होगी मरने के बाद। क्यों? कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, वहां मुक्ति का मतलब स्वर्ग तक की प्राप्ति, कैवल्य मोक्ष नहीं है। यानी बात जो मोक्ष होते हैं ना, एक मोक्ष होते हैं कैवल्य मोक्ष, एक मोक्ष होते हैं नित्य मुक्ति, सुसुप्ति अवस्था में संसार के व्यवहार से मुक्ति मिल जाती है। मिलती है कि नहीं? तो कहने का मतलब नित्य मुक्त, आत्मा नित्य मुक्त है। तो नित्य मुक्त कब होगा? जागृत में होगा, स्वप्न में होगा, सुसुप्ति में होगा, कैसे होगा? आत्मा नित्य मुक्त है, आत्मा में तीनों काल में बंधन नहीं है। तो गुरु जी बंधन नहीं है तो हमको वेदांत वाक्यों का श्रवण करने की जरूरत क्या है? हम तो नित्य मुक्त है, क्या जरूरत है वेदांत वाक्यों का विचार करने का? क्यों आपसे महावाक्यों का श्रवण करने का क्या जरूरत है? यदि शिष्य ऐसा प्रश्न करते हैं तो इसका क्या उत्तर देगा? बोला बेटा, आत्मा तो नित्य मुक्त है, इसमें संदेह नहीं है, आत्मा में कोई बंधन नहीं है। परंतु तूने जो आपने को आरोपित कर दिया है, अविद्या का, अज्ञान का, संसार का जो आरोपित किया है ना, आरोप किया है अपने में, ये आरोप को हटाने के लिए श्रवण करना चाहिए। अविद्या, आवृत्ति, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, भ्रांति निवृत्ति, निरंकुश स्थिति, सात अवस्था जीभ में रहता है बेटा। जीभ में सात अवस्था हमेशा रहती है, याद रखना। तुम भलाई करो, अविद्या, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, भ्रांति निवृत्ति, निरंकुश तृप्ति, तृप्ति, तृप्ति, आनंद, आनंद के अनुभव, अंकुश रहित तृप्ति। जिस तृप्ति में किसी प्रकार का अंकुश माने लगाव नहीं है, बंधन नहीं है। जैसे हस्ती को अंकुश लगा करके कंट्रोल करता है कि नहीं, ऐसे तुम्हारे आनंद में कोई प्रतिबंधक, कोई रुकावट, कोई वो नहीं है। तो देखो, अविद्या है, आवरण है, तुम्हारे अंदर अविद्या है कि नहीं? अविद्या है तो फिर आवरण भी होगा। अविद्या का दो शक्ति है, आवरण और विक्षेप शक्ति। आवरण और विक्षेप शक्ति अपने स्वरूप को आच्छादन कर देता है। जिसके द्वारा स्वरूप आच्छादित हो जाता है, ढक जाता है, उसको आवरण कहते हैं। आवरण जैसे नाटक दिखाता है कि नहीं, नाटक के सामने जो है ना, जो श्रोता होते हैं ना, श्रोता और जो है ना कलाकार, ये दोनों को बीच में एक पर्दा डालता है, पर्दा को आवरण कहते हैं। तो भीतर का व्यक्ति बाहर नहीं देखता, बाहर का व्यक्ति भीतर नहीं देखता है, तो दोनों को एक करने के लिए क्या करना पड़ता है, आवरण हटाना पड़ता है। ऐसे जीव और ब्रह्म में आवरण पड़ा है, जीव और ब्रह्म में क्या पड़ा है, तो ब्रह्म भी भीतर है, तुम भी भीतर हो, दोनों हो। ये भी तुम ब्रह्म को नहीं जानते हो, अपने को नहीं जानते हो, क्या कारण है, तो अविद्या का आवरण पड़ा है। तो अविद्या के आवरण पड़ने से ब्रह्म के ऊपर तो विक्षेप पैदा हो गया, विक्षेप आने बात, विक्षेप कहते जीव को, विक्षेप माने जीव है। तो जीव जो है ये कर्ता भोक्ता सुखी दुखी संसारी क्लेश कर्म विपाक आशय आने बात, ये पांच क्लेश कर्म विपाक आशय, ये जो चारों है ना, ये चारों जिसमें रहेगा उसका नाम आज जीव है, और क्लेश कर्म विपाक आशय चारों जिसमें नहीं रहता उसका नाम ईश्वर है। ये दोनों जीव ईश्वर दोनों कहाँ रहते हैं, दोनों भीतर रहते हैं, एक ही जगह में रहते हैं, पर विस्में अविद्या का आवरण शक्ति है ना, दोनों को अलग कर दिया। इसीलिए पंचदशी में लिखते हैं अनिबत, हाँ, माया माया का दो बेटा है, एक का नाम जीव, एक का नाम ईश्वर। अनिबत माया का दो बेटा है, एक का नाम जीव, एक का नाम ईश्वर। तो जीव और ईश्वर का ऐसे क्या चीज है, दोनों माया का बेटा, माया का बेटा दोनों है, परंतु दोनों होता हुआ अभी दोनों बेटा माया रूपी माता का स्तनपान करता है। वो क्या है, द्वैत रूपी जो भेद रूपी जो दूध है वो दोनों पीता है। माया इच्छा यो कामधेनु वत्स जीव ईश्वरो, माया नाम का जो है ना कामधेनु है, उसका दो बसड़ा है जीव और ईश्वर। जथेच्छा पिबताम द्वैतम, जब तक तुमको दूध पीना है तो पियो, खूब पियो, खूब पियो। कौन सा दूध, द्वैत रूपी दूध, भेद रूपी दूध पियो। वास्तव क्या है, वास्तव में अद्वैती है। माया इच्छा यो कामधेनु वत्स जीव ईश्वर हो, जथेच्छा पिबताम द्वैतम, अद्वैतम परमार्थ था, परमार्थ में दोनों एक ही है, दोनों में कोई जीव ईश्वर में भेद नहीं है। और जब तब अज्ञान का आवरण है, अविद्या है, तब दोनों में तो आवरण कैसे हटाओगे, आवरण हटाना पड़ेगा। तो अविद्या की जो आवरण शक्ति है, अविद्या का जो आवरण शक्ति है, आवृत्ति है, कहो आवरण कहो आवृत्ति कहो, ये आवरण हटाने के लिए वो जो अभी अभान आपादक, अभी आपने बोला ना, एक है अभान आपादक आवरण और एक असत्व आपादक आवरण, दो आवरण होता है। जीव से अधिकारी से गुरु ने पूछा, कुटस्थम तुम जानासी, क्या तू कुटस्थ को जानता है, तो ज्ञात्वा भी उच्यते नाहम कुटस्थम जानामि, मैं कुटस्थ को नहीं जानता। तो कुटस्थ को नहीं जानता, कुटस्थ को जानता है, नहीं जानता मतलब कुटस्थ को मानता है कि नहीं, कभी तो कहते नहीं जानता। फलाना सेठ को तुम जानते हो, बोले नाम तो सुना, जानता नहीं। ऐसे कुटस्थ को तुम जानते हो ना? हम कुटस्थ जाना है, मैं कुटस्थ को नहीं जानता। ये न जानने का नाम अभन आफादा का वरण, बान नहीं हो रहा है, बान नहीं हो रहा है। और जो असत आफादा कुटस्थ तो है नहीं, है ही नहीं, इसका नाम असत्व आपादक। तो असत्व आपादन जो आवरण है वो नाश कैसे होगा? वेदांत वाक्यों के श्रवण करने से। रोज सुनते हो ना, रोज सुनते हो, सुनते सुनते सुनते सुनते सुनते सुनते ये असत्व बना, तब तुम्हारे मन में विश्वास होगा है ईश्वर नाम का कोई वस्तु है। महात्मा लोग बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं, सुनो सुनो भजन करो भजन करो, हाँ, जीवन का कल्याण करो जीवन का कल्याण करो, जीवन के सदुपयोग करो, बोलता है कि नहीं? तो सुनते सुनते मन में आता क्या है तेरे जाने तो सही, हाँ? तो असत्यपन तो नहीं है, है नहीं।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: ஓம் சிவாய நமஹ. Shaivam.org இன் அன்பான நேயர்களே, நீங்கள் கேட்கவிருப்பது சிவகீர்த்தனைகள் பாடல், கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் இயற்றிய சபாபதிக்கு ராகம் அபோகி, பாடியவர் ஸ்மிருதி ஸ்ரீதர். வணக்கம். ஓம் சிவாய நமஹ.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

नान्यङ्गैर्नक्षत्राणि रूपेण पृथिवीं त्वचाजुम्बकाय स्वाहा। हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्याजा।

निभर्ति तस्मादाह संवत्सरवृत एवात्तिरिच्यतैता आप्रियः प्रजापतिः प्रजास्पृष्ट्वा ऋचा नो मन्यतत्।

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்த கிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
1: பைலி பார் வோ மருபூமி கி யாத்ரா கர் ரஹா தா ஔர் உஸ்கோ பியாஸ் லகி வோ பியாஸா தா. तो स्वाभाविक ही है कि जो व्यक्ति जिस वस्तु को चाहता है वह उसी को खोजता है. स्वाभाविक ही है क्योंकि वह उस समय उसके लिए पानी की आवश्यकता थी, इसलिए वह पानी के ही खोजी में लग पड़ा. तो प्यास तो उसको सुबह ही लगी थी, प्यास उसको सुबह लगी थी. और सुबह सुबह एक तो प्यास लगी, दूसरी बात है कि वह कोई सनातनी हिंदू ब्राह्मण रहा होगा निष्ठावान, तो उसको ये लगा कि पानी नहीं है तो मैं कैसे स्नान करूं, तो कैसे संध्या करूंगा, कैसे मैं जप तप करूंगा, कैसे ईश्वर आराधना करूंगा. कहीं यदि पानी मिल जाए तो मैं खूब पानी भी पीऊंगा, नहा लूंगा, फिर उसके बाद पाठ करूंगा, पूजा करूंगा, ध्यान करूंगा, जप करूंगा, तप करूंगा. ये जब ना ही नहीं पा रहा हूं तो मैं संध्या वंदन कैसे करूं, जप पूजा पाठ कैसे करूं. तो उसको सुबह सुबह पानी की तलाश रही, इधर खोजता है, उधर खोजता है, उधर खोजता है, कहीं पानी नहीं मिलती. लेकिन धीरे धीरे उसकी खोजी भी जारी है, खोजी के साथ साथ समय व्यतीत होता जा रहा है, उसकी खोजी जारी है. और जब धीरे धीरे दिन का जब मध्यान्ह का समय हुआ, सूर्य अंतरिक्ष में मध्य में आ गए और तेज प्रचंड रूप में प्रकाशित होने लग गए, तब पानी का संस्कार उसके अंदर विद्यमान था, पानी की वासना उसके अंदर थी. और साथ ही सूर्य के किरण उन मरुभूमि के जो रेत थे उसमें पड़ गए और उसमें से चमक निकलने लग गया. तो कुछ दूरी पर उसको पानी की प्रतीति हो गई, भ्रांति हो गई. और क्योंकि भ्रांति बिल्कुल नजदीक हो तो फिर भ्रांति नहीं होती है, अति दूर हो तो भी भ्रांति नहीं होगी. आपको मरुभूमि बहुत दूर है तो यहां बंबई बैठे हुओं को पानी की भ्रांति नहीं होगी, अति दूर होने पर भी भ्रांति नहीं होगी. बिल्कुल सामीप्य होगा तो भी पदार्थ अपरोक्ष हो जाएगा, तब फिर उसको भ्रांति नहीं होगी. तो भ्रांति के चार साधन हैं, बता दिया गया है आप लोगों को. कहीं भी भ्रम ज्ञान पैदा होने के लिए, भ्रांति पैदा होने के लिए ये चार साधन चाहिए. सबसे पहले अधिष्ठान इदम चाहिए, दूसरी बात जिसकी भ्रांति होनी है उसका संस्कार होना चाहिए, तीसरी बात मंद अंधकार होना चाहिए, स्पष्ट प्रकाश नहीं होना चाहिए, चौथी बात संस्कार होना चाहिए. संस्कार इदम मंद अंधकार और सादृश्य, सादृश्य ये भी जरूरी होता है. तो ये चार साधन के द्वारा वह भ्रांति हो जाती है, कोई भी पदार्थ आपको दिखाई पड़ेगा. लेकिन ये बात ध्यान रखने ना, कोई भी अधिष्ठान में कोई भी पदार्थ नहीं दिखेगा. अधिष्ठान का जैसा सादृश्य है उसी सादृश्य के संस्कार होने चाहिए. अधिष्ठान और संस्कार दोनों की सादृश्यता मिल जाए, समान आकार मिल जाए तो आपको भ्रांति हो जाएगी. जैसे सर्प के सादृश्यता रस्सी, रस्सी के सादृश्यता सर्प. ये देख लो, जिस आकार का सर्प रस्सी है और उसी आकार का सर्प का संस्कार है, तब फिर उसी आकार के रस्सी के प्राप्त होते ही वह सर्प की भ्रांति हो गई. एक गोल मटोल पत्थर में सर्प की भ्रांति नहीं होगी, क्योंकि सर्प के आकार से वह अधिष्ठान पत्थर की सादृश्यता नहीं है. हां, सादृश्यता होना बहुत जरूरी. जैसे सीपी की चमक और चांदी की चमक में सादृश्यता है, इसीलिए सीपी में चांदी की भ्रांति हो जाती है. और इसी प्रकार से सर्प की और डोरी की सादृश्यता है, इसलिए डोरी में सर्प की भ्रांति हो जाती है. इसी प्रकार से जीव चैतन्य में और कूटस्थ ब्रह्म चैतन्य में सादृश्यता है। आभास चैतन्य और ब्रह्म चैतन्य में सादृश्यता है, तब अज्ञानियों को जीव ही परमात्मा है मानकर वह अज्ञानी बैठ जाता है। आपको पता चला? ये दृष्टांत ध्यान से सुन लेना। आप अभी अपने को जो जीव मान रहे हो, जीव मानने का कारण क्या है? सादृश्यता के चलते आप जीव को मान रहे हैं। हाँ? किसके सादृश्यता? ब्रह्म के चैतन्य के सादृश्यता आपकी आभासित चैतन्य के साथ मिल गई। आप समझ गए कि नहीं? ये थोड़ा सा मैं नया शब्द प्रयोग कर रहा हूं आपको। आपको इस समय मैं कर्ता भोक्ता जीव हूं, सत्य हूं, यथार्थ हूं, वास्तविक हूं, ये आपको जो बोध हो रहा है ना, ये बोध का कारण क्या है पता है? आप वास्तव में कर्ता नहीं है, आप वास्तव में भोक्ता नहीं है। आप ये कर्ता भोक्ता पना आपकी पारमार्थिक नहीं है। जन्म मृत्यु सुखी दुखी कर्ता भोक्ता पना आपकी पारमार्थिक स्वरूप नहीं है, फिर भी आपको यही लग रहा है कि मैं कर्ता हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं यथार्थ हूं, मैं वास्तविक हूं, यह आपको लग रहा है। ये लगता क्यों है? क्योंकि आप प्रतिबिंब हैं और बिंब की सादृश्यता आप में आ गया। बिंब कैसा है तो बोले चैतन्य है, बिंब सत है, चित है, आनंद रूप है और पारमार्थिक सत्य है। उसी का प्रतिबिंब आपके अंतःकरण में पड़कर जीवात्मा चिदाभास खड़ा हुआ है। तो ब्रह्म की चेतनाता की सादृश्यता अंतःकरण में पड़े हुए चिदाभास की भी चेतनाता दिखने लग गया, तो आप भ्रांति से यही ब्रह्म है ये कहने लग जाओगे। और इसी के चलते मैं यथार्थ हूं, ब्रह्म की यथार्थता पारमार्थिक सत्यता अंतःकरण में पड़े हुए चिदाभास में भी तत्सादृश्यता दिखाई पड़ गया, तब आपको लगने लगा कि मैं कर्ता भोक्ता, मैं पारमार्थिक हूं, यथार्थ हूं, सत्य हूं, यह आपको लग रहा है। तो ये सादृश्यता है, इसीलिए आपको मैं कर्ता भोक्ता चिदात्मा पारमार्थिक हूं ये भ्रांति हो रही है। अब जब अनुसंधान करने लग जाओगे तो भ्रांति का कारण हट जाएगा। तब आपको जब कूटस्थ का बोध होगा तो बोले अरे ये अकर्ता अभोक्ता है कूटस्थ, सच्चिद आनंद तो कूटस्थ है, मैं तो केवल खामोखाम मैं ही सच्चिद आनंद मानता रहा। ये तो आपको चिदाभास के रूप में सच्चिद आनंद वेदांत नहीं बोलता है कभी भी, कूटस्थ के रूप में आपको सच्चिद आनंद कहता है। अब ये भ्रांति क्या होती है? जैसे दर्पण के मिरर के सामने आप खड़े होते हो तो आपकी आकृति और दर्पण के अंदर दिखने वाले पदार्थ की आकृति मिलती है, तब आपको भ्रांति होता है कि दर्पण के अंदर जो दिख रहा है वो बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है, सांसू छे। हाँ आ तो सांसू छे, महाराज मुख छे, मेरा ही मुख है और तुम्हारे मुख तो गर्दन के ऊपर है, वहां कहां से आ गया? तो सादृश्य का यही तो भ्रांति का सब कारण होता है। यस्यैव स्फुरणम सदात्मकम असत कल्पार्थकम भासते। तो इस भ्रांति को फिर तोड़ेंगे कब? ये भ्रांति हटेगा कब? असत कल्प पदार्थ भी सत के रूप में प्रतीत होता है। किसके चलते? बोले जिस सत के स्फुरणा के चलते असत पदार्थ भी सत के तरह प्रतीत होता है। अब यह भ्रांति टूटेगी कैसे? साक्षात तत्वमसीति वेद वचसा यो बोध इत्याश्रितान। ये भगवान शिव के बारे में, गुरु मूर्ति के बारे में कहा गया है, दक्षिणा मूर्ति के बारे में ये कहा गया है। आश्रितान, ये आश्रितान माने अपने आश्रय में रहने वाले को, परमात्मा के आश्रय में रहने वाले को कभी भी जगत सत्यत्व की भ्रांति नहीं हो सकती है। बात समझे? दीपक के आश्रय में रहने वाले को कभी भी रस्सी में सर्प की भ्रांति नहीं हो सकती है। दीपक के आश्रय में रहने वाले को ध्यान देना, प्रकाश के दीपक के आश्रय में रहने वाला या चलने वाले को कभी भी रस्सी में सर्प की भ्रांति नहीं होगी। होगी? दीपक के आश्रय में रहने वाला का मतलब क्या हुआ? दीपक को घर छोड़कर वो बाहर जाएगा नहीं। जो दीपक के आश्रय में रहेगा तो दीपक को साथ में लेके जाएगा ना। ध्यान देना, दीपक के आश्रय में रहने वाला व्यक्ति दीपक को छोड़कर कभी जाएगा अकेले? प्रकाश के आश्रय में रहने वाला व्यक्ति प्रकाश को छोड़कर कहीं वो गमन करेगा? हैं? नहीं करेगा। और जब प्रकाश को छोड़कर गमन नहीं करेगा, जब भी कहीं भी जाएगा तो प्रकाश को लेकर ही जाएगा, तो उसको रस्सी में सर्प की भ्रांति होगी। रस्सी में सर्प की भ्रांति किस कारण से होता है? प्रकाश के अभाव के कारण। बात समझ गए कि नहीं? जिस प्रखर प्रकाश की आवश्यकता थी वह प्रखर प्रकाश के अभाव के चलते न होने के कारण रस्सी में सर्प की भ्रांति हो गई। और प्रकाश के आश्रय में रहने वाला तो प्रकाश साथ में लेकर चलेगा, तब जब भी वो प्रकाश का प्रयोग होगा, साथ में है प्रकाश, इसलिए प्रकाश का प्रयोग करेगा, प्रकाश का प्रयोग करेगा तो रस्सी रस्सी के रूप में ही प्रतीत होगा, सर्प के रूप में भ्रांति होगी नहीं। जब रस्सी रस्सी के रूप में प्रतीत होगा तब तो अधिष्ठान का ज्ञान होते ही अध्यास तब वस्तु बाधित होता है। जब अधिष्ठान का ज्ञान हो जाएगा तो अध्यास का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा, भ्रांति का अवसर ही प्राप्ति नहीं होगा। तो प्रकाश के आश्रय में रहने वाले को रस्सी में सर्प की भ्रांति नहीं होती। इसी प्रकार से गुरु के आश्रय में रहने वाले को या परमात्मा के आश्रय में रहने वाले को कभी भी जगत सत्यत्व की भ्रांति नहीं हो सकती। हाँ, क्योंकि गुरु बार बार उसको बार बार उसको बोध कराते रहेंगे, सावधान, ख्याल रखना। ले जी, गुरु के सामने जाकर कहो कि गुरुदेव, मैं पहले बहुत जवान था।

अभी तो गाल के खाल सिकुड़ गए, अभी तो पांव कांपने लग गए, अभी हाथ कांपने लग गए, नेत्र मंद हो गए, कान मंद हो गए, दांत गिर गए, है? अभी तो यही है ना। अरे देखते जाओ, एक दिन ऐसा आएगा ये सब नष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। गुरु ये कहने में संकोच नहीं करेगा, आपके सामने संकोच करेगा? ये वस्तु एक दिन नष्ट हो जाएगा ये कहने में गुरु संकोच करेगा? तुमको अत्यधिक प्रिय है, और जितना भी प्रिय हो वे, प्रिय होने पर भी गुरु ये कहने में संकोच नहीं करेगा कि जो तुम्हारे लिए अत्यधिक प्रिय है वह एक दिन नष्ट होने वाला है, ये कहने में गुरु संकोच नहीं करेगा। हाँ, और यदि ये संकोच करता है तो वो गुरु ही नहीं है। इसका जो अत्यधिक प्रिय पदार्थ वस्तु है वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, ये थोड़ा अप्रिय शब्द है, होना तो नष्ट है, फिर भी मैं कह दूं तो इसको अच्छा नहीं लगेगा, अप्रिय है करके वो संकोच करेगा तो फिर गुरु ही नहीं होगा। वो तो यथार्थ बात सामने रखना, गुरु का लक्षण है जो जैसा है उसको उसी रूप में रख देना, ये गुरु का लक्षण है। शिष्य यदि सीपी को बोरा में भर के ले आवे, ध्यान देना मैं दृष्टांत तो दूसरा दे रहा हूं, मैं दृष्टांत तो ज्यादा दिया करता हूं। शिष्य सीपी को बोरा में भर कर ले आवे और गुरु के सामने कहे कि गुरु महाराज मेरे पास एक बोरा चांदी है, मैं एक बोरा चांदी लेके आया हूं, अब तो मैं मालो माल हो गया हूं, क्योंकि उसको सीपी में चांदी की भ्रांति हुई, बोरा भर कर ले आया। गुरु ने जाकर देखा कि एक बोरा चांदी है, जरा दिखाओ। एक बोरा है तो थोड़ा सा हमको भी दे दे, आश्रम में अन्न छत्र में काम आ जाएगा, हॉस्पिटल में काम आ जाएगा, गुरुकुल में काम आ जाएगा, वृद्धाश्रम में काम आ जाएगा, है? थोड़ा तो तू हमको भी दे देना, देगा कि नहीं? है? गुरु आप कहते हो तो थोड़ा देंगे भाई, ज्यादा तो नहीं देंगे, है? गुरु मांगेंगे तो देना पड़ेगा ना भाई, अन्न क्षेत्र में मांगेंगे, हॉस्पिटल के लिए मांगेंगे, पुस्तक प्रकाशन करने के लिए मांगेंगे, है? स्वाध्याय क्लास चलाने के लिए मांगेंगे, गुरुकुल चलाने के लिए मांगेंगे, सबका सब तो नहीं देंगे, थोड़ा तो देंगे ना। एक बोरा चांदी रखा है, जरा देखा तो सही। गुरु गए, आओ जी। अंदर रखा था उसने, क्योंकि चोरी ना हो जाए, गुरुजी को ले गया अंदर, बोरा का मुख खोला और दिखा दिया, देख लो ये पूरा बरा बोरा भरा पड़ा है चांदी से। अब गुरु को पता चल गया ये तो पूरे के पूरे सीपी है, चांदी नहीं है, और शिष्य क्या कह रहा है? चांदी है। गुरु क्या कहेंगे? ये सीपी है, इसमें 1% भी चांदी नहीं है, ये पूरा का पूरा ये समुद्र के सीपी है, मिट्टी के भाव भी ये बिकने वाला नहीं है, ये जानते हुए यदि मैं ऐसा कह दूंगा तो इसको अप्रिय लगेगा, तो गुरु मौन हो जाएगा? सारू थयो राजेश, संभाल के रखना, काम आएगा। गुरु ये कहेगा? वो गुरु कह रहा, जब तुम मेरे काम नहीं आ रहा तो तेरे किस काम का है? अरे बेटा किसने कह दिया ये चांदी है? बोले नहीं नहीं मैंने कहा। तूने किस आधार से कहा? देखो चांदी जैसा चमकता वैसे ये चमक रहा था, इसलिए चांदी है। क्या अंतर है? बोले बेटा चांदी तो इधर भी चमकता है उधर भी चमकता है, ये तो केवल इधर चमकता है उधर नहीं चमकता, उधर देख उधर तो नहीं चमक रहा है। बोले ये चांदी नहीं है, मिथ्या है, चांदी की तरह प्रतीत होना ये मिथ्या का लक्षण है, प्रतीत न होना ये मिथ्या का लक्षण।

0: लक्षण नहीं है, प्रतीत होना, परंतु चांदी नहीं है, चांदी की तरह प्रतीत होता है परंतु चांदी नहीं है, ये मिथ्या का लक्षण, ये मिथ्या है, निकाल कर बोरा फेंक दे बाहर। हा तो यदि आज गुरु इस प्रकार से अप्रिय उसको बोल देंगे, अप्रिय क्या है, ये चांदी नहीं है कहना ही उसके लिए अप्रिय है कि नहीं, लेकिन आज उसको अप्रिय है बोल देंगे तो वो समझ जाएगा अप्रिय होने पर भी ये चांदी नहीं है करके निश्चय करके बैठ जाएगा। नहीं तो जिस समय उसको पैसे की जरूरत पड़ी और बोरा कंधे में लेकर जौहरी मार्केट सराफा बाजार जाएगा तो उस समय जौहरी भी उसको ये अप्रिय बोलेगा कि नहीं है, तो वहां जौहरी 10 वर्ष के बाद जौहरी अप्रिय सुनाएगा, तो आज ही सुना दो ना अप्रिय और क्या। अरे भाई मरने वाला तो गुरु आज ही कह देगा ना, ये शरीर मरने वाला है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 वर्ष के बाद डॉक्टर कह देगा कि नहीं कि ये शरीर मर चुका है, बोलो कहेगा कि नहीं है? कभी न कभी एक दिन न एक दिन डॉक्टर कह देगा कि नहीं ये मर चुका है, नाश हो गया है, कहेगा कि नहीं। और वो 10 वर्ष के बाद वो अप्रिय जब उस डॉक्टर से सुनना है तो वही आज गुरु से सुन लो कि ये शरीर नाश होने वाला है, खत्म हो गई बात। अब इसको कहीं अप्रिय मानते हो तो मान लो, लेकिन उस अप्रिय से तो प्रिय है, उस अप्रिय से तो प्रिय है ये है। आश्रितान यो बोधयत्याश्रितान, आश्रितान माने अपने आश्रय में रहने वाले को ये गुरुमूर्ति क्या करते हैं, साक्षात तत्वमसी वेद वचसा यो बोधयत्याश्रितान। और देखो गुरु तो अप्रिय नहीं बोलते और अच्छा प्रिय बोलते हैं, साक्षात तत्वमसी, यह तो मैं कर्ता भोक्ता जीव जन्म मृत्यु वाला मानते हुए चल रहा था, गुरु तो यहां तक कह देते हैं कि तू तो न जन्मने वाला है, न मरने वाला है, न बूढ़ा होने वाला है, न रोगी होने वाला है, न भोगी होने वाला है, भोग और रोग तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को छूते हैं, रोग किस शरीर को छूता है, स्थूल शरीर को, और भोग कौन से शरीर को छूता है, सूक्ष्म शरीर को, भोग रोग तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर में है, और तू तो ये शरीर से परे है। साक्षात तत्वमसी महावाक्य के द्वारा सीध ही तू यह है, जैसे दशमस्तमसी करके संत बताता है, दसवां तू है, और तू कह रहा था कि दसवां मर गया, साथी मर गया, और 10 के 10 रो रहे हैं, किस लिए है, 10 के 10 रो रहे हैं किस लिए, दसवां मर गया करके, और जिस दसवें को मर गया कह रहे हैं वो 10 के 10 दसवां हो सकते हैं गिनती के क्रम में है, गोल बैठकर जहां से भी गिनती शुरू करोगे दसवां वही है, लेकिन गलती क्या कर रहे हैं, वह गोलाई को गिन रहा है क्योंकि गिनने वाला खड़ा है, गलती तो ये हो रहा है ना, गोल में बैठे हुए को तो गिन रहा है, गिनने वाला खड़े होकर गिन रहा है, अब गोलाई में तो 9 ही बैठे हैं, तो निश्चय हो गया कि आते समय 10 आए थे, गिनते समय में 9 मिल रहा है, है? यही तो भ्रांति है कि नहीं, पैदा होते समय तुमने सत्य माना था, पैदा होते समय तुमने सत्य माना था, शादी करते समय में पति और पत्नी को सत्य माना था, और जब देखते हैं तो छोड़ के चला जाता है, तो गलती हुई कि नहीं, तुम्हारी गिनती गलत हो गई कि नहीं, तुम्हें मान रहे थे कि हमेशा सत्य रहेगा, इसी तरह सत्य रहेगा जिस तरह आज सत्य है, इसी तरह हमेशा सत्य रहेगा, पति भी यही मानता था कि हमेशा सत्य रहेगा, पत्नी भी यही मानती थी कि हमेशा रहेगा है? और जब गिनती शुरू की तो घट गया, तो फिर रोना पड़ा कि नहीं? अरे भाई, तुमने शरीर को गिन लिया था इसलिए रोना पड़ा है? आत्मा को गिन लिया होता तो रोना नहीं पड़ता हा? और दूसरी बात, हम तो ये कह रहे हैं कि आत्मा को गिन लिया होता, आत्मा तो गिनती का वस्तु है ही नहीं है? तो रोने लग गए। महात्मा ने कहा कि तुम किस आधार से कह रहे हो? बोले हमने गिना है, 10 आए थे, अब यहां 9 है। गिना है? महात्मा ने आंख घुमा ली, 10 के 10 खोपड़ी वही है, फिर तुम कह रहे हो 9? कैसे गिना, बोलो। तो सबके सब 9 बैठ गए लाइन में, गोलाई में, और तो गिनने वाला था वो लाइन से बाहर आ गए। देखिए गुरुजी, हम गिनती में गलती नहीं करते हैं, सेंट जेवियर्स स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हैं? हम कोई गलती नहीं करते हैं गणित में। देखिए 1, 2, 3, 4 लाइन के सिर को हाथ रखते हुए गिन रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 देख लो कहां है 10वां। गुरु ने उसके सिर में रखा, ये 10वां। मूर्ख, अपने सिर में क्यों नहीं हाथ मारता है? तेरा सिर नहीं है? सिर में हाथ रख के गिनना है तो तेरे में भी तो गर्दन के ऊपर सिर है, ऐसा करके रखना 10। अरे बात ठीक कह रहे हैं, 10वां कहीं कुछ नहीं मरा है, देख लो। बड़ा रोते रहे, तूफान हो गया, अब गो खत्म। साक्षात तत्वमसीति वेद वोचसा यो बोधयत्याश्रितान, अपने आश्रय में रहने वाले को गुरुमूर्ति परमात्मा क्या करते हैं, तू ही सत अस्तिभाति प्रिय, ये सच्चिद आनंद अद्वितीय, जिस ब्रह्म को तू खोज रहा है वही ब्रह्म तू है करके बोधयति, उस माया निद्रा से जगा देते हैं। माया निद्रा से जगा देते हैं, माया की भ्रांति से उसको जगा देते हैं। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। इस बोध का फल क्या है? गुरु जब जगा देता है, उस जगने के बाद जगने का फल क्या है, अनुभूति क्या है, इस बात को ये तीसरे लाइन से स्पष्ट करेंगे, उसको कल देखेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम
1: नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org. Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Dandi Adigal Nayanar, presented by Singapore Shankaranarayanan. Thank you. ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। भक्तों, अभी हम सुनेंगे और एक नायनमार की कहानी, जिनका नाम दंडी अड़िगल है। दंडी अड़िगल का जन्म तिरुवारूर में हुआ था। वे जन्म से ही अंधे थे। बाहरी नेत्रों से वंचित होने के अभिशाप को कमी न मानकर वे सदा सेवाकारी में लगे रहते। उन दिनों शिव मंदिर की पश्चिमी दिशा का सरोवर फट जाने से बेकार हो गया था और अन्य धर्मों को मानने वाले ने वहां बस्ती बसा ली थी। दंडी अड़िगल ने तालाब को गहरा करने का निश्चय किया। तालाब के बीच में से जहां मिट्टी पट गई थी किनारे तक थोड़ी थोड़ी दूर पर डंडे गाड़े और रस्सी बांध ली। बीच तालाब से मट्टी खोदकर टोकरी में भरकर अपने सिर पर लाद कर रस्सी से बाहर आते और मिट्टी को फेंकते, फिर टोकरी लेकर तालाब में फिर से चले जाते। पूरी निष्ठा के साथ वे तालाब को गहरा करने का काम अकेले ही कर रहे थे। अन्य धर्मावलंबी उन्हें इस काम से रोकते, पर वे सुनी अनसुनी कर देते थे। वे लोग इनका उपहास करने लगे, अरे तुम आंखों से अंधे ही नहीं, कानों से भी बहरे हो। प्रतिदिन की उल्लाहनों से उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। एक दिन उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया, देखते रहो, मैं दृष्टि प्राप्त करूंगा और तुम दृष्टिहीन हो जाओगे। उन लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कहा, यदि तुम्हारी दृष्टि लौटेगी तो हम लोग इस बस्ती को छोड़कर चले जाएंगे और वापस यह स्थल शिव भक्तों के लिए हो जाएगी। उसी रात शिव ने स्वप्न में आकर दंडेड़िकल को दर्शन दिए और उनसे कहा, कल तुम्हारी आंखों की दृष्टि लौटेगी, तुम्हारी सेवा की निंदा करने वालों की दृष्टि खो जाएगी। उधर राज्य के नरेश को स्वप्न में प्रभु आदेश मिला और भक्त के दूर के कष्ट को दूर करने के लिए नरेश स्वयं दंडेड़िकल के पास आए। नरेश के आग्रह से जब दंडेड़िकल ने जल में डुबकी लगाई तो उनके नेत्रों की ज्योति लौट आई। उधर निंदक लोगों की नेत्र ज्योति समाप्त हो गई, उन्हें प्रण के अनुसार उस स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। 20वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित इस तथ्य को हमारे पूर्वज हजारों साल पहले अपने जीवन में अनुभव कर चुके थे। जिस मिट्टी खोदने के काम को नेत्रयुक्त अनेक मजदूर मिलकर करते हैं, दंडेड़िकल ने अकेले ही प्रारंभ कर दिया था। दूसरों ने उन्हें अंधा कहकर खिल्ली उड़ाई, तब भी उनके मन में हीन भावना नहीं व्यापी। कोयम्बतूर जिले के कोंगु समाज में पुराने समय में विकलांग बच्चों के पालन पोषण का अच्छा प्रबंध होता था। ऐसे बच्चों में रुचि लेने वाले परिवार को निश्चित आर्थिक सहायता भी मिलती थी। दुख की बात यह है कि ऐसी सुंदर व्यवस्था अब लुप्त हो रही है। आज पूरे भारत में विकलांगों की समस्या से जूझने, उन्हें सहायता देने, प्रशिक्षण देने आदि की योजनाएं केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही है। इससे समाज के एक दुर्लभ वर्ग को समाज का उपयोगी सदस्य बनाने में सफलता मिल रही है। यही है दंडेड़िकल की कहानी।
3: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
4: सेवे नित्यं श्रीकरं त्वत्पदाब्जं। हे भगवान, अब मैं सारे संसार और सांसारिक पदार्थों को छोड़कर नित्य निरंतर श्रीकरं, श्री माने श्रेय, करोतीयति श्रीकर, कल्याणकार कारक, हम जीवों का कल्याण करने वाले आप श्रीकरम, तत्पदाब्जम, आपके चरण रूपी कमल, अब्ज अब माने जल, तस्मा जाता अब्ज कमल, चरण कमल, आपका जो चरण कमल है क्या है, बोले श्रीकरम, हमारे कल्याण करने वाला है। इसलिए मैं अब नित्य निरंतर कल्याणकारी आपके उस चरण कमल का सेवे मैं अब सेवन करूंगा। अभी तक संसार और सांसारिक विषयों का सेवन करने के कारण मैं भवाटवी में पड़ गया था, भवसागर में पड़ गया था, भवाटवी में पड़ गया था, भवारण्य में पड़ गया, भटक गया था। आपके कृपा से अंधकार छंट गया, प्रकाश आ गया, अब मैं भटकूंगा नहीं। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शुक्ल यजुर्वेद बांदे दिनी शाखा रुद्र संहिता रुद्रीयम में पहला अध्याय में संकल्प शिव संकल्प सूक्त है, छह ऋचा का, छह मंत्रों का शिव संकल्प सूक्त है जो हम लोग रोज पाठ करते हैं। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवन तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे शिव, मे मनः, आपकी कृपा से मुझे एक मन नामक तत्व अनादिकाल से, मेरे अस्तित्व काल से ही मुझे प्राप्त हुआ है। आपने बड़ी कृपा करके मुझे एक मन नाम का साधन दिया है, लेकिन मैं उस मन से जुड़कर अनादिकाल से अभी तक अशिव संकल्प करता रहा। शिव माने परमात्मा आत्मा, अशिव माने अनात्मा संसार विषय। मैं उसी विषय का चिंतन करता रहा, विषय का सेवन करता रहा, विषय भोग करता रहा, और विषय अशिव होने के कारण अनादिकाल से आज तक मैं संसार में भटकता रहा। अब मेरा वह मन सर्वथा शिव संकल्प करने वाला होवे, अशिव संकल्प कभी न करे, विषयों का चिंतन कभी न करे, निर्विशेष परमात्मा का ही चिंतन करे। जो कि जागृत में दूरम उदयति, मन जागृत अवस्था में कहां से कहां नहीं पहुंचता, दूर से दूर चला जाता है, दूरम उदयति, अमेरिका जाता है, लंदन जाता है, बोलो पहुंच गया कि नहीं, अमेरिका पहुंचा कि नहीं, बोलो लंदन पहुंचा कि नहीं। आपके बहु बेटे अमेरिका लंदन में होंगे, फट से पहुंच गया वो है, बैठी कि नाम लिया कि पहुंच गए, वो देखो नाम लिया पहुंच गया, अरे कितनी जल्दी पहुंचता है। दूरम उदय थी ये जागृत तो दूरम उदय थी, तदु सुप्तस्य तथैवेति, स्वप्न में भी पता नहीं कहां कहां पहुंच जाता है। दूरंगमन ज्योतिखान ज्योतिरेकन, वो स्वयं अंधकार में भी पहुंच जाता है, उसको अंधकार बाधित नहीं करता है वो, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश, उसके पास प्रकाश है, उसको अंधकार बाधित नहीं करता। तन में मन, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प अस्तु, अब नित्य निरंतर शिव संकल्प करे, अशिव संकल्प न करे। माध्यमदेनी शाखा शुक्ल यजुर्वेदी ये मंत्र है शिव संकल्प सूक्त के, ऐसे छह सूक्त हैं। लगभग वही बात यहां शंकराचार्य जी कहते हैं। सेवे नित्यम श्री कर्म तत्पदाब्जम, आपके चरण की विशेषता यह है कि जिसने आपके चरण की स्मरण की उसका कल्याण हुआ है, इसलिए श्री कर है आपका चरण। नित्यम सेवे, भावे मुक्तिर्भाजनम राजमौले, हे राजमौले मैं इसी जन्म में मुक्ति का भाजन पात्र बनूं, मुक्ति मोक्ष प्राप्त करूं। अद्या अविद्या, अविद्या क्या है? अविद्या के चार अंग हैं, अविद्या के चार अंग हैं। महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट लिखा है और इसी तरह जगद्धर भट्ट ने भी उसकी व्याख्या की है। अविद्या के चार अंग हैं, अनित्य में नित्य बुद्धि अविद्या का प्रथम अंग है, अपवित्र में पवित्रता बुद्धि ये दूसरा अंग है, अनात्मा में आत्मबुद्धि यह अविद्या का तीसरा अंग है, दुख में सुख बुद्धि यह अविद्या का चौथा अंग है। समझे नहीं? अनित्य में नित्य बुद्धि अविद्या का पहला अंग है, असूची में सूची बुद्धि, अपवित्रता में पवित्र बुद्धि या विद्या का दूसरा अंग, अनात्मा में आत्मबुद्धि अविद्या का तीसरा अंग, और दुख रूप में सुख बुद्धि या विद्या का चौथा अंग। पंडित जगद्धर भट्ट ने लिखा है स्तुति कुसुमांजलि में, अनित्ये नित्यासम अशुचि निशुचित्वव्यसनिता अनात्मन्यात्मस्थां अतमहपि दुःखे सुखमिति। आधे लाइन में ही अविद्या की व्याख्या कर दी है। चतुर्ता चतुर्धा दुर्भेद्याम, चार भेद वाली यह अविद्या कैसी है? दुर्भेद्यम अवितर अविद्याम, दुर्भेद्याम अविद्याम, ये साधारण प्रयत्न से, साधारण उपक्रम से, साधारण अभ्यास से ये चार अंग वाले अविद्या को तुम भेदन नहीं कर सकते, इसलिए दुर्भेद्याम। चतुर्धा दुर्भेद्याम अवितरम अविद्याम परिणताम हताशेषस्वाभम अभिदति मूलम भवतरो। और ये अविद्या क्या है? चार अंग वाले अविद्या भवत अरोह, ये संसार वृक्ष के रूप में खड़ा है। चार अंग वाला ये अविद्या, यही मूलम भवत अरोह, ऊर्ध मूलम दशा काम स्वत्तम प्रापुरभ्य छंजांसी यस्य पर्णानि स्तंभेद समेदभित अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चाद्र न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा। असंगता रूपी अस्त्र के अलावा इस संसार वृक्ष को काटने में और कोई साधन उपयोगी नहीं है, असमर्थ है। असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा ही यह संसार वृक्ष को काट सकते हैं। ये संसार वृक्ष खड़ा हुआ कहां से? तो बोले यही जो चार अंग वाला अविद्या है, यह मूलम भवतरो, ये संसार वृक्ष का मूल है, इसी में यह संसार वृक्ष खड़ा हुआ है। तो हे शिवा, आपकी कृपा से वो मूल उच्छेद हो गया भाई है। आद्या विद्या हृदगता निर्गता सीत, क्योंकि विद्या हृद्या हृदगता तत्प्रसादात, आपकी कृपा से इस संसार वृक्ष के मूल को काटकर उखाड़कर फेंकने में समर्थ विद्यैव तन्नास विधौ पटीयसी, रामगीता। उस मूला विद्या को उखाड़ के फेंकने में ब्रह्म विद्या ही सक्षम है, उसके अलावा अन्य न कर्म तज्जम सविरोध मीरितम। कर्म, योग, उपासना, भक्ति, ये सब उस मूला विद्या को उखाड़ के फेंकने में समर्थ नहीं, विद्या ही समर्थ है। और ब्रह्म विद्या वही समर्थ है और नहीं। विद्यैव तन्नास विदौ पटीयसे, न कर्म, क्यों महाराज कर्म क्यों नहीं समर्थ? बोल तज्जम, उसी अविद्या से उत्पन्न हुआ हुआ कर्म क्या अविद्या को उखाड़ के फेंकने में समर्थ होगा है? बोलो, मिठाई खा खा कर शुगर बढ़ा है और शुगर को घटाने में मिठाई समर्थ होगी? बोलो है, जिस मिठाई खा खाकर शुगर बढ़ गया है, उस शुगर को नष्ट करने के लिए मिठाई समर्थ है नहीं है? तब क्या उसके विपरीत, मीठा के विपरीत कड़ुआ खाना पड़ेगा? नीम पत्ता खाओगे तब जाकर उसको घटाने में समर्थ होगा। इसलिए नीम पत्ता ही, करेला ही उस मिठाई खाकर पैदा हुआ हुआ शुगर को घटाने में समर्थ विरोध है ना, क्योंकि मिठाई के विपरीत करेला उसका विरोधी है। इसलिए कर्म अविद्या को नाश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अविद्या से ही तो कर्म पैदा होता है। अज्ञान हुए बिना कर्म होगा? अविद्या के बिना कर्म होगा? और आगे कहते हैं शंकराचार्य जी, हमारे मोहनीश के हिसाब से दिन में चार श्लोक होने चाहिए। चिंता न कर बेटा, पूरा करूंगा है। एक छक्का लगे तो पूरा हो गया ना है? अभी तो दो बॉल बाकी हैं, दो दिन बाकी है ना है? श्लोक कितनी बाकी हैं अब? नौ, तो दो छक्के में तो गए है। एक दिन में छह श्लोक कर देंगे तो गया, दो दिन में खत्म हो जाएगा। चिंता न करो बेटा। दूरी कृतानि दुरितानि दुरक्षराणि दौर्भाग्य दुख दुरहंकृति दुर्वचांसी सारं त्वदीय चरितं नितरां पिबन्तम् गौरी समामिह समुद्धर सत्कटाक्ष। संबोधन है गौरी शाह। हे गौरी के पति, गौरी के स्वामी, गौरी के ईश्वर, गौरी शाह, गौरी के मालिक, दूरक्षराणि उसका क्षरण करना बहुत कठिन है। दूरम दुखेन क्षरयितुं शक्यः तानि दुरक्षराणि कानि दुरितानि। जीवन के अनेक जन्मों में अर्जित पाप समूह, अनेक अनेक जन्म से उपार्जित पाप समूह दुरितानि हैं, दूर क्षराणि। इन दुरितों को तुम साधारण कर्म से नाश नहीं कर सकते हो। अनेक जन्म में किए हुए पाप को एक जन्म में एक बार हरिद्वार गंगा गोता लगाने से सब नष्ट हो जाएगा, समझते हो तुम? इस भ्रांति में नहीं रहना। अनेक अनेक जन्म में अर्जित जो पाप समूह है वह एक दिन के एकादशी करने से नष्ट हो जाएगा, इस भ्रांति में नहीं रहना। तीन तीन वर्ष तक किया हुआ पाप पुरुषोत्तम महीना एक महीने में व्रत करके नष्ट करूंगा, ये भ्रांति में नहीं रहना भाई। है फिर भी तुम कर रहे हो, करो, कुछ तो कुछ कम होगा। कुछ तो कुछ कम होगा, नहीं होगा ये बात नहीं है, नत्र शास्त्र गलत हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं समझ लेते कि वो पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे, कुछ कम होंगे, इसलिए करते रहो, नहाते रहो गंगा जी। है बारह वर्षीय कुंभ मेला आ रहा है, गोदावरी नहाने के लिए चले जाना। करते रहो करते रहो, लेकिन ये निश्चित कर लो, हिसाब लगा लो, तुम खुद ही, हमको कहने की जरूरत नहीं है, खुद ही हिसाब लगा लो। दैनंदिनी में हमारे कर्म में पाप कर्मों की संख्या ज्यादा होगी कि पुण्य कर्मों की संख्या, स्वयं कैलकुलेशन कर लो भाई, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति यही कहेगा कि मैंने तो कोई पाप किया नहीं है। अरे तुम्हारे कहने से होगा, तुमने पाप नहीं किया, तुमने पाप किया कि नहीं किया ये तो तुम खुद जजमेंट हो गए। न्यायाधीश बनना चाहते हो आप नहीं है, शास्त्र क्या कह रहा है, गुरु क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहा है, गुरु शास्त्र आदि जजमेंट करें तो फिर मान लेना, नहीं तो अपने आप मैंने कोई पाप नहीं किया करके बैठकर आत्मसंतुष्टि हो सकती है, इससे पाप कम नहीं होने वाले, आत्मसंतुष्टि हो सकता है। तो फिर कौन नष्ट करेगा? दुरक्षराणि दुरितानि दूरीकृतानि तत्प्रसादात्, ये आपकी ही कृपा से मैं उन पाप समूहों को हटाने में समर्थ हुआ। और आगे क्या किया? दौर्भाग्य दुख दुरहंकृत दुर्भचांसी। तो अब मेरा दुर्भाग्य भी चला गया, वो दौर्भाग्यम और तज्जन्य दुखम और तत्संबंधी अहंकृति अहंकार दुर्वचांसी सब दुरितानि, ये दुरितानि के विशेषण है सब, दुर्भाग्य दुरितानि दुख दुरहंकृति दुरितानि दुर्वचांसी दुरितानि सब दूरीकृतानि दुरितानि दुरक्षराणि सारम त्वदीय चरितम नितराम पिबंतम नितरम नित्य निरंतर सर्वथा भावेना तोदीय चरितम चरितामृत, नित्य निरंतर आपके दिव्य चरित्र रूपी अमृत के पान करने पर सारम त्वदीय चरितम नितराम पिबंतम माम मिह समुद्धरा सत्कटाक्षे, तो मैं सर्वथा दुरितों से मैं मुक्त हो चुका हूं, इसीलिए माम समुद्धरा इसी जन्म में यही मैं जहां पर हूं, यही जिस योनि में हूं उसी योनि में इह माम समुद्धर सत्कटाक्ष। माम समुद्धर सत्य रूपी दृष्टिपात करके मेरा उद्धार करो, सत कटाक्ष सत ब्रह्म सत तत्व, तो कटाक्ष माने दृष्टिपात, आपकी सत कटाक्ष होगा तो मेरा उद्धार होगा, इसी जन्म में आप मुझे कृपा करके मेरा उद्धार करें, क्योंकि मैंने जो करना था तो वो तो कर दिया आपकी कृपा से। दुरक्षराणी नष्ट करना बहुत असंभव था आपकी कृपा न होती तो, लेकिन वो आपकी कृपा से सभी दुरितानी दुरक्षराणी नष्ट कर दे, दूरी कृतानी, इसलिए अब मेरा उद्धार करिए। महर्षि दुर्वासा जी ने परसंभु महिमना स्तोत्रम की रचना की है, जैसे पुष्पदंताचार्य जी ने शिव महिमनी स्तोत्र की रचना की, वैसे परशुराम ने शंभु महिमना स्तोत्रम करके रचना की है, तो उसमें बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है।
5: जातिर्लज्जा निजकुलमद सर्वसंसित्वार्थेर देहाहंता स्वकृत दुरित द्वंद्वपाशो अभिमानः,
4: यही दुरित हैं जातिर, जाति का अभिनिवेश, लज्जा निजकुलमद जिस कुल में पैदा हुए हैं उसी कुल का अभिनिवेश, निज कुल मदा, तुम क्या समझते हम ब्राह्मण कुल के, तुम क्या समझते हमारे बाप दादे मूर्ख नहीं थे, पढ़े लिखे थे, यही मद कुल निज कुल मदा है। अरे भाई हमारे पिता बड़े अफिसर थे,
0: अरे तेरे पिता अफिसर थे तो क्या है,
4: लोग जो है ना अपनी अहम को अन्य के कर्म के साथ जोड़कर कहते हैं, महाराज हमारे पिताजी हमारे दादाजी बड़े शिव भक्त थे, नित्य निरंतर घर में रुद्राभिषेक करते थे, भागवत पढ़ते थे, वेद पढ़ते थे, पूजा करते थे, और हमारे पिताजी और दादाजी ने कितने पुस्तकें अलमारी में भर के रखी है, पेन अभी देखने जाओ बहुत पुस्तकें हैं। अरे बाबा ये सब तो ठीक है, तू क्या कर रहा है ने? तेरे दादा पूजा करते तू क्या कर रहा है, तेरे बाप दादा जो है भागवत पढ़ते थे तू क्या कर रहा है, तेरे दादाजी जो है रुद्राभिषेक करते थे तू क्या कर रहा है। मैं ये कर रहा हूं तो नहीं बोलता, कहता क्या है दादाजी करते थे, बाबा जी करते थे, मेरी मां करती थी, अरे तू क्या कर रही है ने? एक बहन कहने लगी महाराज मेरे पिताजी मेरी मां हमारे घर में कहीं ना कहीं से संत खोज खोज कर ला के बुला के खाना खिलाते रहते थे। अक्सर रोज कोई ना कोई साधु संत भोजन के लिए आया करते थे। अरे भाई तू क्या कर रही है, हैं? तेरी मां ने तो किया, तू क्या कर रही है, हैं? तो यही निज कुल महम जा तेरे लज्जा निज कुल मद सर्व संसित्वरार्धि देहांता अपने शरीर में अहम बना स्वकृत दुरित द्वंद्व पासो अभिमान सर्वे हेते ये जितने भी थे ये सब क्या है मां विनिहतास सर्वे हेते मम विनिहतास आज वे सब मेरे जीवन से नष्ट होके चले गए। सर्वे हेते मम विनिहतास तन्महावाक्य सूर्य आपके द्वारा प्रदत्त महावाक्य रूपी प्रचंड प्रकाश के सामने ये सब क्या हुआ। ज्योतिपुंजयी किम परमहम देवभद्रम समी है ये सब चले गए। तो आपके द्वारा दिया गया दिव्य उपदेश महावाक्य रूपी सूर्य के प्रकाश के चलते हाँ ये सब जाति कुल अभिमान मद घमंड ये सब के सब दुरितानी दूर अक्षरानी दुरितानी दूरीकृतानी हटा दिया। बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया था। कहते हैं रात्रि में सूर्य न होने के कारण तारों का प्रकाश का भी सहारा लेना पड़ता है। अब कभी कभी चंद्रमा के प्रकाश का भी सहारा लेना पड़ता है। मोमबत्ती का टॉर्च का ये सब विकल्प हैं, सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब दिन में प्रचंड सूर्य का प्रकाश उदित होता है उसके सामने सभी आलंबन निरस्त हो जाते हैं, अनुपयुक्त हो जाते हैं। तो महावाक्य जन्य ज्योति पुंज के चलते हे शिव उस प्रकाश के सामने सब दुरितानी दूरीकृता खत्म हो गए। और आगे क्या कहेंगे कल करेंगे, चिंता नहीं करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं

0: शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: तो किया तो किया, लेकिन आज के नए संदर्भ में तो ये सोचना होगा कि अब आखिर ये जो हमारी प्राचीन दृष्टि को ध्यान में रख करके हम निश्चय करें ईश्वर के स्वरूप का, या इस समय जो ये तथाकथित लोग जो ईश्वर के बारे में कुछ तर्क देते हैं उनके तर्क के बल से हम ईश्वर के स्वरूप का निश्चय करें। आज हम इस मोड़ पर खड़े हुए कि हमको क्या करना है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और आचार्य के द्वारा जो कठोर तपस्या के बल से जिन्होंने ये संशोधन किया है, और तर्क युक्ति प्रयुक्ति के द्वारा वैदिक वाक्य को और ज्यादा मजबूत और दृढ़ करके जो हमारे सामने ये निष्कर्ष रखा है, क्या हमको उनकी रक्षा करनी है, या ऐसे ही जो जिसके जीवन में कोई सदाचार नहीं है, कोई विचार नहीं है, जीवन जीने की शैली में कोई नियम कानून नहीं है, ऐसे लोग जो है बैठे बैठे ईश्वर के बारे में तर्क युक्ति प्रयुक्ति बताए और कहे कि ईश्वर नहीं है, तो क्या हमको उनके ये सिद्धांत की रक्षा करनी है, ये हमको सोचना है। लेकिन हम अब विडंबना की बात यह भी है कि हमारे यहां जो ईश्वर के बारे में जो प्रमाण वाक्य है उनका इतना अप्रचार है, प्रचार नहीं क्या है, अप्रचार है, अप्रचार है या अपप्रचार है, ये दोनों बातें हैं। अप्रचार भी है यानी कि हम लोग वैदिक सनातन धर्मावलंबी होते हुए भी हम अपने ये प्रमाण को नहीं जानते कि वेद क्या है, श्रुति क्या है, स्मृति क्या है, सूत्र क्या है। हम लोग यही समझते हैं कि ये श्रुति स्मृति और सूत्र ये इनका विचार करना ये केवल साधु लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है। साधु लोग जो है वो इस बारे में विचार करते हैं, न जाने क्या विचार करते हैं, हम लोगों को पता नहीं है, इसलिए हम अपने को उससे अलग और जुदा कर लेते हैं। इसलिए हम नहीं जानते वेद क्या है, श्रुति स्मृति सूत्र क्या है। आज पूछा जाए हमारे बच्चे ही हमको यदि पूछे कि आप ये ईश्वर ईश्वर कर रहे हैं, आप कथा में जा रहे हैं, ये पूजा उपासना कर रहे हैं, आखिर क्या है बताइए, ईश्वर क्या है, तो आप क्या कहेंगे, आपके पास कोई जवाब है क्या? यहां जो आ रहा है वो तो बताएंगे, यहां उनको तो पता है ईश्वर क्या है, प्रमाण क्या है, क्या जवाब देना है, लेकिन ये तो एक आम सनातन धर्मावलंबी की एक आम बात है, सबके लिए विचारणीय विषय है। क्योंकि आजकल बात यह भी है कि हमारे शास्त्रों का जो अभ्यास है उनका भी स्वरूप और उनका प्रचार ऐसा सिकुड़ता जा रहा है ताकि हमारी उसको और ध्यान ही नहीं जा रहा, इसलिए हम न जाने कैसे अवैदिक धर्म का समर्थन जाने अनजाने में कर रहा है। इन बातों का हमको ख्याल नहीं रहता कि हम तो यही सोचते हैं कि हम ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक के पीछे हम अवैदिक धर्म का समर्थन तो नहीं कर रहे, ये हमारे सामने उसके लिए कोई मापदंड यदि हो तब तो हम समझ सकते हैं, यदि नहीं तो हम जाने अनजाने में अवैदिक धर्म का समर्थन करके हमारे पर हमारे मूल पर हम कुठाराघात करते जा रहे, आज समय ये है। इसलिए स्वाध्याय अवश्य जानना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए ताकि हम जाने हमारे ऋषि और मुनि और आचार्य ने जो क्या कहा है। देखे यदि आप ईश्वर के बारे में हम कहे तो भगवान भाष्यकार ब्रह्मसूत्र भाष्य के दूसरे सूत्र में ये कहते हैं कि ये जो संसार है उनकी उत्पत्ति परमात्मा से हुई है, जन्माद्यस्य यतः, जन्म स्थिति भंग यतः, जिससे उनको कहते हैं ब्रह्म परमात्मा। तो जैसे अभी कहा कि कोई कहे कि कैसे पता चले ये सारे संसार की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है, भगवान शंकराचार्य जी वहां ऐसे अकाट्य तर्क बता रहे हैं और कहते हैं देखो ये जो है ईश्वर के बिना इस प्रकार के संसार की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। पहले ही कहते हैं अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्तस्य। देखिए आप इस संसार में पाते हैं कि कर्ता और भोक्ता के स्वरूप को, अनेक कर्ता, कोई ऐसे है जो केवल कर्ता ही करता है, कोई ऐसे है जो केवल भोक्ता ही भोक्ता है, वो कर्ता करता ही रहता है भोक्ता भोक्ता ही रहता है। ये नियमन किसने किया कि ये कर्ता है ये भोक्ता है? क्या अपने आप हो गया? अनेक कर्तृ भोक्तृ से संयुक्त ये संसार है। फिर आगे कहा मनसापि अचिंत्य। भगवान भाष्यकार कहते हैं चार तर्क के द्वारा कहते हैं मनसापि अचिंत्य, यानी कि जिसका चिंतन मन से नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे अजूबे इस संसार में है जिसका चिंतन मन से नहीं कर सकते। अब बताइए अब वो अपने आप हो सकते हैं क्या? फिर एक तर्क ऐसा बताया है प्रतिनियत देश काल क्रिया फलाश्रयस्य। देखिए इस संसार में आप ये पाएंगे कि देश भी नियत है। देश देखिए और संसार के और देशों की बात मत करें, भारतवर्ष की बात करें। भारतवर्ष में हम देखते हैं कि जितने प्रांत है वहां पर आप जमीन को देखेंगे तो कहीं भी आपको एक जैसी नहीं दिखेगी। कश्मीर में जाएंगे वहां जो जमीन है वहां वो जो खेती होती है वो आप कन्याकुमारी जाएंगे तो वहां आप वो खेती नहीं होगी। आप ऐसे पश्चिम भारत में जाइए वहां जो होता है वह पूर्व में जाएंगे तो वहां वो नहीं होगा। सब जगह ये जो भेद है देश में वो देश के भेद जो है क्या अपने आप हो गए? प्रतिनियत देश। फिर काल लीजिए जो काल के भेद है। देखिए भामतीकार ने बढ़िया सुंदर दृष्टांत बताया कि आप काल का भेद देख सकते हैं कि देखिए कहीं एक पक्षी है जैसे कोकिला ही है। कोकिला का शब्द क्या इस समय आप सुन सकते हैं? उनका एक नियत काल है, वो नियत काल में ही आप जो है वो कोकिला का रव सुन सकते हैं, अब नहीं सुन सकते। कस्तूरी मृग ले लीजिए, वो जो है सर्वत्र उपलब्ध है क्या? क्या कारण है आखिर कि वो एक देश विशेष में ही रहते हैं? प्रतिनियत देश काल क्रिया जो है, क्रिया भी दिख लीजिए जो वैदिक क्रिया है, वो जो प्रस्तोता उद्गाता अध्वर्यु इत्यादि जो कर रहा है वो यजमान नहीं कर रहा, जो यजमान कर रहा है वो प्रस्तोता भी नहीं कर रहे। और फल के बारे में ले लीजिए, फल के बारे में जो हम आज देखते हैं कि क्या सबको एक जैसा कोई फल मिलता है क्या? तो एक जैसा फल क्यों नहीं मिलता है? आखिर इस फल के भेद में भी कोई ऐसी शक्ति होगी कि जो सबको जो है फल भिन्न भिन्न रूप से दे रही है, वो कौन फल देते हैं? क्रतौ सुप्ते जागृत तमसी फल योगे क्रतुमताम। महिम्न स्तोत्र में हम लोग पढ़ते हैं क्व कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधन अमृते। ऐसा पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं कि क्रतौ सुप्ते, आपने कर्म तो कर लिया, यज्ञ कर लिया, पूर्णिमा से लेकर अमावास तक यज्ञ कर लिया, उसके उनके भी काल नियत है यज्ञ कर्म के भी, तो वो कर लिया ठीक है। अब वो एक काल आ जाता है समाप्त हो जाता है, चाहे अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक किया तो पूर्णिमा को समाप्त तो हो ही गया, वो जीवन भर तो वो चलता नहीं है कर्म। हमको बहुत सारे कर्म करने रहते हैं, एक को निपटा दिया, दूसरे को निपटा दिया, दूसरे को निपटा दिया, वो समाप्त हो गया। तो आखिर ये कौन ध्यान रखता है ये कर्म किए हुए कर्म कहां रहते हैं जो हमको कालांतर में फल देते हैं? यहां तक कि कुछ कर्म ऐसे भी है जो इहलोक में भी फल देते हैं हमको कि चलो 2 साल के बाद 5 साल के बाद या वृद्धावस्था में जैसे हमने युवावस्था में इकट्ठी की हुई जो संपत्ति है, धन संपत्ति है जो बैंक में, वो उनका उपयोग जैसे हम वृद्धावस्था में करते हैं, तो वो बैंक वाले आपको वृद्धावस्था में पेंशन के रूप में देते हैं कि नहीं देते? क्यों देते हैं? वो कहते हैं आपने यहां हमारे वहां जमा कर रखा है इसलिए हम दे रहे। जो जमा नहीं किया होता तो अब कोई ऐसा व्यक्ति पहुंच जाए कि हमको दीजिए, तो वो बैंक वाले कहेंगे पासबुक दिखाइए, यदि दिया है तो लो, नहीं तो कहां से मिलेगा। इसलिए कहते हैं यदि हम कर्म किया है तो कर्म कहीं ना कहीं जमा तो रहता होगा। कहां रहता है? हमारे अंतकरण में। क्या कभी देख सकते हमारे अंतकरण के? न जाने कितने करोड़ों जन्मों के संस्कार भरे पड़े हुए हैं, यहां तक बंदर के भी संस्कार है।

इसलिए वो अंतकण में रहते हैं और इनका ध्यान कौन रखते है? वही ईश्वर रखता है। इसलिए पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं कि भगवान ये कर्म तो जो है वो सुप्त हो जाता है फिर, लेकिन आप वो जगते हैं, ध्यान रखते हैं। देखिए हम लोग सो जाते हैं तो हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है, शरीर को कौन चलाता है पता है? अच्छा प्राण चलता रहता है कि वो भी सो जाता है? प्राण वो तो जो खर्राटे सुन रहा है उनको पता है कि ये कौन सो रहा है, तीसरे कमरे में आवाज आती है नहीं है, वो तो सो रहा है मस्ती से, उनको पता है नहीं कि अब मेरा क्या हो रहा। किंतु प्राण जो है जैसे चलता रहता है और इस शरीर की रक्षा करता रहता है, भगवान ने ये ऑटोमेटिक व्यवस्था तो बना नहीं रखी क्या? हमको हाथ हिलाना है तो इच्छा करनी पड़ती है, पैर उठाना है तो इच्छा के बल पर, बोलना है तब भी वो इच्छा के बल पर, यदि देखना है सुनना है चाहे ज्ञानेन्द्रिय से, कोई भी ज्ञानेन्द्रिय से हमको ज्ञान करना है, कर्मेन्द्रिय से कर्म करना है, तो हम पहले मन में इच्छा करते और इच्छा इस विषय नहीं होती जिस विषय का हमको ज्ञान होता है, और ज्ञान होता है इस विषय नहीं, इच्छा होती है और इच्छा के अनुसार हम कृति करते हैं। नैयायिक लोग कहते हैं कि कोई भी कर्म के पीछे ये तीन कारण होते हैं, ज्ञान चिकित्सा और कृति, तब जाकर के आपको कर्म फल मिलता है। तो अब बताइए अब प्राण के लिए क्या आपको ये करना पड़ता है? प्राण अपने आप चलता ही रहता है। क्या अभी क्या कभी आप ये कहते हैं कि हमको अब श्वास लेने का काम है, अब हमारे पास हम दूसरा काम नहीं कर पाएंगे, ये श्वास लेने का काम है, अब हम श्वास नहीं लेंगे तो हमारा शरीर छूट जाएगा, इसलिए पहले हम श्वास लेते रहे। अब बताइए श्वास लेते रहे तो और काम कब करेंगे? इसलिए भगवान ने ये जो ऐसी व्यवस्था बना रखी है, अब ये व्यवस्था को कौन बना सकता है? क्या ईश्वर के सिवा और कोई ये संभव है क्या? कुछ जो है अवैदिक धर्मावलंबी कहते हैं जीव तो है, अब जीव की बात ले लीजिए, जीव की शक्ति कितनी है, जीव को ये भी पता नहीं हमारे शरीर में क्या हो रहा है। डॉक्टर को भी पूछ लीजिए तो वो भी जो है मशीन का सहारा लेकर के वो बताते कि तुम्हारे शरीर में ये हो रहा है, उनको भी पता नहीं है, उन्होंने जो है अपने 25 साल जो है अध्ययन में लगाए, 25 साल तक उन्हें रात दिन वो जो है बड़े बड़े इतने इतने थोथे पढ़े हुए है, उनको भी आप कहे कि मेरे को ये हो रहा है तो पहले आप मशीन के सामने आ जाइए, उनको वो भी मशीन के ऊपर विश्वास करता है, वो जो जड़ मशीन है जो बोलती नहीं है चलती नहीं है मशीन, वो भी मनुष्य के द्वारा बनाई हुई है, उनमें देख करके आपको ये रिपोर्ट कर देते कि आपको ये हो रहा। अब ये जो भगवान के द्वारा जो बनाई चीज है जिसके अंदर प्रामाण्य का विचार करके बताया गया है, उसके बारे में हम कहते हैं कि न जाने कैसा लिखा होगा, न जाने ईश्वर होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो डॉक्टर बता देते तो वो सब होता है। वो कहते हैं कैंसर हो गया तो हम बड़े चिंतित हो जाते हैं, क्या देखा कैंसर, लेकिन वो बता रहा है, हम चिंतित हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर के बारे में या धर्म के बारे में या इस प्रकार के अध्यात्म के बारे में बात आती है तो हमारे पल्ले ये बात नहीं पड़ती है। ज्योतिष कहता है कि तुमको 7वें स्थान में शनि है तो हम क्या कहेंगे, होगा ही होगा, वो कहेंगे कि खर्च करना पड़ेगा, आपको सब ठीक ठाक हो जाएगा, जल्दी कीजिए जरा, हम जो भी कहेंगे वो देने के लिए तैयार है। और वो वेद के पास जाएंगे तो वो क्या कहेंगे, वात पित्त और कफ में वैषम्य आ गया है, बस हम आपको दवा देते हैं ठीक हो जाएगा। और जो अखबार में बड़ी बड़ी वो आती है ना कॉलम में, और सब एड्रेस भी अंदर दिया जाता है, चारों ओर से जो निराश व्यक्ति हमारे पास आए ऐसा लिखा हुआ पाएंगे, हमारे पास कोई भी व्यक्ति निराश नहीं गया, हम कोई भी काम कर सकते हैं चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसमें पूरा लिस्ट हुआ रहता है कि ये काम हम कर सकते हैं, वहां भी जाएंगे तो वो क्या कहेंगे कि आपको भूत का प्रवेश हो गया आपके शरीर में, प्रेत का प्रवेश हो गया, वो निकालना पड़ेगा। ये बहुत चल रहा था कुछ समय पहले, आजकल तो थोड़ा कम हो रहा, तो ये सब जो है हम उसके ऊपर तो विश्वास करते हैं किंतु ये भगवान के वचन के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। इसलिए आप लोगों को ये पता जरूर चल गया कि

0: स्वाध्याय की क्या आवश्यकता है। स्वाध्याय यदि हम करेंगे तो हम ये सारी बातों का जवाब संसार में किसी को भी दे सकते हैं। इसलिए स्वाध्याय अभ्यसनम, और इसी को भगवान ने वाणी का तत्व कहा। स्वाध्याय का अभ्यास यानी कि वेदाभ्यास। वेदाभ्यास का अर्थ ये नहीं कि आप ऋग्वेद आदि शास्त्र ही पढ़े, ये अभी वेदांत परिभाषा चल रही है उनका अभ्यास वो वेदाभ्यास है। क्योंकि ये वेदांत क्या है, ये तो वेद है, और उनकी परिभाषा में क्या होगा। आप आम ले आए, बढ़िया से बढ़िया आम ले आए, तो क्या आप आम पर तोड़ने गए थे क्या। आम ले आए, बाहर से बढ़िया दिख रही है, एकदम पीली पीली सी, सुगंधि भी बढ़िया आ रही है, और आप उसके अंदर फिर इसको वो चप्पू से वो संवारेंगे तो क्या होगा। उसके अंदर से बढ़िया रस निकलेगा। वो रस कहां से आया, आम से। यदि आम केसर कैरे का है तो वो कैरे, वो जो आम आम्रफल है उसमें भी कौन सा रस आएगा, वो आपस का आएगा नहीं। तो आखिर ये नियंत्रण है कि नहीं इसमें भी। तो वैसे ही ये जो परिभाषा में क्या आएगा, जो उसका वेद का रस है वो इसमें आएगा। वो पुराणों में नहीं कहते निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृतम द्रव संयुतम इत्यादि जैसे कहते हैं कि नहीं। बस वो दृष्टांत समझ लीजिए यहां पर भी वो इस तरह ये है। तो ये वेद का अभ्यास और इनको वाणी का तप कहते हैं, समझ में आए। ये है वाणी का तप। और संक्षेप से मैं आपको मानस तप बता दे रहा हूं। मानसम तप क्या है, तो देखो कहिए, कहते हैं भगवान मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रहः भाव संशुद्धि रित्ये तत् तपो मानसम उच्यते। कहते हैं देखो मन का प्रसाद, मन का प्रसाद क्या, प्रसाद यानी कि स्वस्थता। मन स्वस्थ हो, चिंता या उद्वेग से रहित हो, वो कब रह सकता है। आप लोगों ने कभी पाया कि मन स्वस्थ प्रसन्न कब रहता है, कि पाप कर्म करने के बाद या पुण्य कर्म करने के बाद कब रहेगा प्रसन्न। देखिए पुण्य पाप कर्म करने वाला जो है वो पाप कर्म तो कर लेगा, लेकिन वो पाप ऐसा है ना, वो अपने जहन में आता है तो वो स्थिर नहीं रह पाता। पुण्य आता है अपने जहन में तो वो स्थिर रहता है, आपको पता भी नहीं चलता। और पाप जब आता है, क्योंकि है ही वो अस्थिर, वो आएगा तो आपको अस्थिर करेगा ही करेगा, और वो बड़ा भारी है, इसलिए वो आपको उसका भार भी लगेगा। अब भार को आप उठाते हैं तो मन प्रसन्न रहता है या अप्रसन्न रहता है। आप कहेंगे कि भार को फेंको तभी शांति मिलेगी। अब भार उठाते उठाकर जा रहे, उठाना पड़ रहा है, घर में जाकर के ऐसा फेंकते हैं और ऐसे आराम से बैठ जाते हैं कि बस थोड़ी देर आराम कर ले, तो प्रसन्नता कब आएगी। भार कम होगा तब। तो भार तो कई प्रकार के भार है, अब उसमें नहीं जाना है हमको क्या भार है, किंतु इतना समझिए कि मन प्रसन्न रहना चाहिए। वो प्रसन्न कब रहेगा, यदि हम अपने जीवन को स्वस्थ बनाएंगे, शास्त्रानुकूल बनाएंगे। और जैसे ये कहा जा रहा है पीछे, शरीर वांग्मय और सबको ये सम्मिलित करते हुए अपने जीवन को बनाएंगे, तब जरूर मन स्वस्थ होगा। तो ये मन की जो स्वस्थता है, वैसे आचार्यों ने मन प्रसाद का अर्थ किया विषय चिंता व्याकुल राहित्यम, विषयों की चिंता से जो व्याकुलता हो रही है वो व्याकुलता से रहित मन हो, तब उसको कहते हैं मन प्रसाद। फिर सौम्यत्वम, सौम्यत्वम क्या है। सौम्यत्व का अर्थ जो है आचार्यों ने किया अक्रूरता। अक्रूरता समझ में आए, क्रूरता का अभाव, क्रौर्यता का अभाव। किसी के प्रति हम कभी क्रूर न बने, सबके लिए हम सॉफ्ट बने, तो देखिए, इससे जो संसार में शांति फैलेगी वो क्रूरता से कभी नहीं। क्रूरता से परिवार में शांति नहीं फैलती है तो संसार की शांति की जो बात करने वाले तो वो वैसे ही पहले ही अक्रूर होते हैं, और संसार में शांति फैलाने की बात करते हैं। तलवार के बल से कहीं संसार में शांति फैल सकती है क्या? तो अक्रूरता सर्वलोक हितेशित्वम, मन में सर्वलोक के प्रति हितेशीपना हो, वो सौम्यत्व है। और देखिए आगे कहा मौनम। मौनम ये क्या है? मन का तप है। मौनम यानी कि चुप रहना, मौनम यहां नहीं है। आचार्य शंकरानंद जी बहुत सुंदर ढंग से यहां पे लिखते हैं कि मौनम का अर्थ है कि आप एक महीना तक, दो महीना तक, छह महीना तक कुछ बोले नहीं, वो मौन नहीं है। वो यदि मौन कोई यहां पे तप किया कहा यदि जाए तो कहते हैं वो तो पशु भी नहीं बोलते। तो क्या पशु को तप का फल मिलेगा क्या? ऐसा आचार्य शंकरानंद जी ये गीता की टीका लिखते समय ऐसा यहां लिखते हैं, कहते हैं मौनम का अर्थ है श्रवण मनन निधि ध्यासन करना। मनन मुनिर भावम मौनम। मुनि का भाव क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार मौनम का अर्थ है मनन। मनन किसका? जिसका हम ये जो श्रवण कर रहे हैं उनका मनन, ये है मौन। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं है। संसार में प्राय ये माना जाता है ये मौन रह रहा है बड़ा तपस्वी है, ये नहीं। मौनम का अर्थ है मनन करे, ये मन का तप है। देखिए फिर कहा आत्मविनिग्रह। आत्मविनिग्रह क्या है? मन। आत्म का अर्थ है मन, उनका विनिग्रह या विषयों से उनका प्रत्याहार। और भाव संशुद्धि। भाव संशुद्धि क्या है? व्यवहार में जो है माया राहित्यम, व्यवहार हम ऐसा करें हम वस्तुसत व्यवसाय करें। व्यवसाय का अर्थ पता है? व्यवसाय क्या है? जो बोल दिया वो बोल दिया, चाहे वो घाटा हो चाहे लाभ हो, अब बोल दिया सो बोल दिया, व्यवसाय ऐसे ही चलता है आजकल। इसलिए व्यवसाय को नहीं बोलते, बिजनेस बोलते, अभी बोला अभी फूक, इसलिए कहीं विश्वासार्ह नहीं है। व्यवसाय का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में व्यवसाय शब्द का प्रयोग किया, व्यवसायत्मिका बुद्धि। भगवान भाष्यकार वहां अर्थ करते हैं व्यवसायत्मिका अर्थ करते हैं निश्चयात्मिका। एक जो निश्चय वो निश्चय, देखिए व्यवसाय का स्वरूप यही है, जो व्यवसाय करते वो जानते कि निश्चय एक बार बोल दिया वो बोलने पर ही व्यवसाय चलता है। आजकल तो चाहे लिख करके दो तब भी वो फाड़ के फेंक देंगे कि मैंने तो तुमको कहा ही नहीं। ये व्यवसाय का स्वरूप हो गया। तो व्यवसाय में माया राहित्य तो वो है भाव संशुद्धि। इति एतत्, ये सब मन के तप है। तो मैंने आपको ये बताया गीता में तप का स्वरूप कि शरीर का तप क्या है, वाणी का तप क्या है और मन का तप क्या है। हम लोग संसार में जिस प्रकार की प्रसिद्धि से जो हम ये तप को जानते हैं, ये भगवान की दृष्टि से तप का स्वरूप ये है। आप सब लोग ये गीता के 17वें अध्याय में देखें, और भगवान ने आगे सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद बताए हैं। उन भेदों में से हम सात्विक कोटि का तप करते रहे और अपने जीवन का कल्याण करें, यही शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत।
1: हरिओम। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन करते हैं। ऐसे समझे तो 3 दिवसीय, क्योंकि बीच में भी एक स्व की हमें पहचान महाराज जी द्वारा हुई, और अभी 2 दिवस हमने तप के बारे में महाराज जी से सुना। भारत के एक बड़े विद्वान सर्वप्रथम विदेश की धरती में गए थे, और पहला शब्द उन्होंने बहुत ही अच्छे फिलोसोफर्स और दुनिया भर के सुप्रसिद्ध व्यक्ति के बीच में जो उन्होंने उद्बोधन किया वह था माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अभी यह हिंदुस्तान में तो बहुत ही मामूली रीत से मेरे भाइयों बहनों की बात होती है, और वहां जब ये बोला गया तो कई समय तक तालियों से उनका स्वागत हुआ, जो भारत की दृष्टि से पहले संत वहां गए थे। कारण क्या था यह हम सोचे कि एक ही शब्द जो उनको इतनी प्रसिद्धि दिए गए हैं स्वामी विवेकानंद जी महाराज, तो जब भी आप बोले तो सामने कौन से श्रोता है, सामने कौन सुनने वाले हैं, उसका क्या प्रतिभाव होगा वह देखें। और दूसरी बात, जिस संस्कृति से वो पधारे थे भारत की, तो भारत की जो गरिमा है भाइयों बहनों, जो वहां नहीं है, जो वहां ये लोग तरसते हैं, ऐसी वाणी को तरसते हैं, ऐसे विद्वान वक्ताओं को तरसते हैं, ऐसी संस्कृति को तरसते हैं, तो जब भी कोई भी बात आप आज की तारीख में ही समझे तो हम ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि कुछ घंटों बाद क्या होगा। तो जो वाणी हम बोले, कल ही मुझे बनारस से फोन आया कि भाई क्या हाल है वहां का। उन्होंने तो पहले 15 मिनट तक बहुत बात चलाई, आपको महाराज जी पता होगा, आप तो हरिद्वार के हैं, तो बनारस हरिद्वार अयोध्या वगैरह में जिस तरह से बात होती है। मैंने बोला यहाँ बम्बे तो बड़ा शांत है, पता नहीं कल बड़ी शांति है, कुछ नहीं है, स्कूलें चालू है, सब व्यवस्थित है। तो बोला अगर जो हमारी धंधा की राजधानी बम्बई है वहां कुछ नहीं है तो हिन्दुस्तान में कुछ नहीं होगा। तो यह हमारी गरिमा होनी चाहिए जो भी बात हम कर रहे हैं किसी वक्त में कर रहे हैं, क्योंकि बूंद बूंद से सागर होता है। तो जो महाराज जी ने जो तीन बातें हमें बताई वह बहुत ही जरूरी है कि जीवन के हर मोड़ पर वाणी व्यवहार, अगर आपको कोई स्थान मिला है तो किसी को मजाक में न ले, और उसको कल अपनी तरफ भी कोई मजाक आ सकती है, तो अगर उसकी प्रतिकार करने की अपनी ताकत है तो किसी को मजाक करे। और जो महाराज जी ने छोटी छोटी बातें जीवन में मगर बहुत ही मान्य रखती है, ऐसी महाराज जी ने जो वाणी हमें यहाँ प्रदान की, आप सबकी तरफ से महाराज जी को हम वंदन करते हैं। महाराज जी अभी जो 9:45 से 9:30 बजे तक की बात बताई, आप सबसे प्रार्थना है कि आज की जो स्वाध्याय है, आज महाराज जी जो स्वाध्याय का आखिरी दिवस रहेगा, उसमें जो एक महीने तक उन्होंने वेदांत परिभाषा के बारे में जो भी बातें बताई है वह बताने वाले हैं, तो जिससे आपको अभ्यास भी होगा कि वेदांत परिभाषा क्या है। कल और परसों हमारे परम पूज्य धर्मानंद जी महाराज है, वह वेदांत परिभाषा पर ही दो दिवसीय उनका भी प्रवचन है। तो वेदांत परिभाषा क्या, उसमें कितने गुण है और किस रीत से वेद की रुचि बढ़ाने के लिए उपयोगी है, वह बात कल परसों में बताएंगे। मगर आज का सत्र बहुत ही जरूरी है, आप 9:45 से 9:30 बजे तक जरूर से बैठे, क्योंकि जो वेदांत परिभाषा अभी अभी शुरू हुई है और महाराज जी उसकी बातें पूरी आपके सामने रखने वाले हैं। तो आप सबसे विनती है ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप बैठे, क्योंकि स्वाध्याय की जो महाराज जी ने बात बताई कि शब्द को लेकर, हर एक श्लोक को लेकर, हर एक मंत्र को लेकर यह जो चल रहा है और सालों साल तक एक एक पुस्तक चल रहा है, तो उसका कारण क्या है और उसमें कितनी रुचि अपनी बढ़नी चाहिए, उसके बारे में आप जरूर से, आपसे फिर से विनती करते हैं कि आप जरूर से बैठें। 9:45 से 9:30 महाराज जी स्वाध्याय कराएंगे। अगले साल पूज्य महाराज जी का जनवरी 2011 में पूरे मास 1 से 31 तक स्वाध्याय प्रवचन होगा। आप सबकी तरफ से फिर से महाराज जी को वंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित श्री धनेश जसवंतलाल मेहता स्मृति व्याख्यानमाला के अंतर्गत श्रीमती चित्रा आनंद के भजन एवं पूज्य श्री हरिभाई कोठारी द्वारा निंदनीय जीवन इस विषय पर प्रवचन होगा, समय 5:15 से 7:30 के दरमियान। कल परसों और 3 तारीख तक प्रतिदिन सायं प्रेमपुरी दिव्य पथ आयोजित चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन की चुनौतियां, यह सुंदर विषय को लेकर परम पूज्य हमारे संस्था के अध्यक्ष विश्वेश्वरानंद जी महाराज की अध्यक्षता में यह जो कार्यक्रम होगा, जो सायं 5 से 7:30 के दरमियान कल परसों और 3 तारीख तक चलेगा, तो इसमें कई विद्वान पधारेंगे। आप सबसे विनती है कि आप भी जरूर से बधारे और आपके परिवार में जो भी अपने बच्चे हैं यंगस्टर्स उसको जरूर से भेजें, क्योंकि यह बहुत जो चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न लाइफ आधुनिक जीवन में किस तरह के हमें चुनौतियों का सामना करना है उसकी बातें हमारे बीच में आएंगी। आज के श्रेय समिति के यजमान है श्रीमती शांताबेन ठाकुरदास देसाई की ओर से आपके जन्मदिन के निमित्त पर, श्रीमती भागीरथी सी दोषी की ओर से श्री अरविंद भाई सी दोषी के स्मृति में, श्रीमती चुमनबाई टी छाबड़िया की ओर से श्री ठाकुरलाल एम छाबड़िया की स्मृति में, श्री राजेंद्र जी दोषी की ओर से श्री जयंतीलाल जी दोषी की स्मृति में। आप या आपके परिवार के सदस्य यहां उपस्थित हो तो पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद एवं प्रसाद ग्रहण करें और शांति पाठों का। हरिओम।
2: ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाथ सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।

सङ्क्रोशैः प्राणान् रेष्माणज्ञस्तुपेन मशकान् केशैरिन्द्रज्ञस्वपासावहेन बृहस्पतिज्ञे शकुनिसादेन कूर्मान् शफैराक्रमाणज्ञस्थूराभ्या मृक्षला।

पृथिवीं त्वचा जुम्बकाय स्वाहा हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्याजा।

निभर्ति तस्मादाह संवत्सरवृत एवात्मनित्यदैता आत्प्रियः प्रजापतिः प्रजास्पृष्ट्वा ऋषा नो मन्यतत्।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: पहली बार वह मरुभूमि की यात्रा कर रहा था और उसको प्यास लगी, वह प्यासा था। तो स्वाभाविक ही है कि जो व्यक्ति जिस वस्तु को चाहता है वह उसी को खोजता है, स्वाभाविक ही है, क्योंकि वह उस समय उसके लिए पानी की आवश्यकता थी, इसलिए वह पानी के ही खोजी में लग पड़ा। तो प्यास तो उसको सुबह ही लगी थी, प्यास उसको सुबह लगी थी, और सुबह सुबह एक तो प्यास लगी, दूसरी बात है कि वह कोई सनातनी हिंदू ब्राह्मण रहा होगा निष्ठावान, तो उसको ये लगा कि पानी नहीं है तो मैं कैसे स्नान करूं, तो कैसे संध्या करूंगा, कैसे मैं जप तप करूंगा, कैसे ईश्वर आराधना करूंगा, कहीं यदि पानी मिल जाए तो मैं खूब पानी भी पीऊंगा, नहा लूंगा, फिर उसके बाद पाठ करूंगा, पूजा करूंगा, ध्यान करूंगा, जप करूंगा, तप करूंगा, ये जब ना ही नहीं पा रहा हूं तो मैं संध्या वंदन कैसे करूं, जप पूजा पाठ कैसे करूं। तो उसको सुबह सुबह पानी की तलाश रही, इधर खोजता है, उधर खोजता है, उधर खोजता है, कहीं पानी नहीं मिलती। लेकिन धीरे धीरे उसकी खोजी भी जारी है, खोजी के साथ साथ समय व्यतीत होता जा रहा है, उसकी खोजी जारी है। और जब धीरे धीरे दिन का जब मध्यान्ह का समय हुआ, सूर्य अंतरिक्ष में मध्य में आ गए और तेज प्रचंड रूप में प्रकाशित होने लग गए, तब पानी का संस्कार उसके अंदर विद्यमान था, पानी की वासना उसके अंदर थी, और साथ ही सूर्य के किरण उन मरुभूमि के जो रेत थे उसमें पड़ गए और उसमें से चमक निकलने लग गया। तो कुछ दूरी पर उसको पानी की प्रतीति हो गई, भ्रांति हो गई, और क्योंकि भ्रांति बिल्कुल नजदीक हो तो फिर भ्रांति नहीं होती है, अति दूर हो तो भी भ्रांति नहीं होगी। आपको मरुभूमि बहुत दूर है तो यहां बंबई बैठे हुओं को पानी की भ्रांति नहीं होगी, अति दूर होने पर भी भ्रांति नहीं होगी, बिल्कुल सामीप्य होगा तो भी पदार्थ अपरोक्ष हो जाएगा, तब तो फिर उसको भ्रांति नहीं होगी। तो भ्रांति के चार साधन हैं, बता दिया गया है आप लोगों को, कहीं भी भ्रम ज्ञान पैदा होने के लिए, भ्रांति पैदा होने के लिए ये चार साधन चाहिए। सबसे पहले अधिष्ठान इदम चाहिए, दूसरी बात जिसकी भ्रांति होनी है उसका संस्कार होना चाहिए, तीसरी बात मंद अंधकार होना चाहिए, स्पष्ट प्रकाश नहीं होना चाहिए, चौथी बात संस्कार होना चाहिए, संस्कार इदम मंद अंधकार और सादृश्य, सादृश्य ये भी जरूरी होता है। तो ये चार साधन के द्वारा वह भ्रांति हो जाती है, कोई भी पदार्थ आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये बात ध्यान रखने ला, कोई भी अधिष्ठान में कोई भी पदार्थ नहीं दिखेगा, अधिष्ठान का जैसा सादृश्य है उसी सादृश्य के संस्कार होनी चाहिए, अधिष्ठान और संस्कार दोनों की सादृश्यता मिल जाए, समान आकार मिल जाए तो आपको भ्रांति हो जाएगी। जैसे सर्प के सादृश्यता रस्सी, रस्सी के सादृश्यता सर्प, ये देख लो, जिस आकार का सर्प रस्सी है और उसी आकार का सर्प का संस्कार है, तब फिर उसी आकार के रस्सी के प्राप्त होते ही वह सर्प की भ्रांति हो गई। एक गोल मटोल पत्थर में सर्प की भ्रांति नहीं होगी, क्योंकि सर्प के आकार से वह अधिष्ठान पत्थर की सादृश्यता नहीं है। हाँ, सादृश्यता होना बहुत जरूरी, जैसे सीपी की चमक और चांदी की चमक में सादृश्यता है, इसीलिए सीपी में चांदी की भ्रांति हो जाती है, और इसी प्रकार से सर्प की और डोरी की सादृश्यता है, इसलिए डोरी में सर्प की भ्रांति हो जाती है। इसी प्रकार से जीव चैतन्य में और कूटस्थ ब्रह्म चैतन्य में सादृश्यता है। आभास चैतन्य और ब्रह्म चैतन्य में सादृश्यता है, तब अज्ञानियों को जीव ही परमात्मा है मानकर वह अज्ञानी बैठ जाता है। आपको पता चला है? ये दृष्टांत ध्यान से सुन लेना। आप अभी अपने को जो जीव मान रहे हो, जीव मानने का कारण क्या है? सादृश्यता के चलते आप जीव को मान रहे हैं। हाँ? किसके सादृश्यता? ब्रह्म के चैतन्य के सादृश्यता आपकी आभासित चैतन्य के साथ मिल गई। बात समझ गए कि नहीं? ये थोड़ा सा मैं नया शब्द प्रयोग कर रहा हूं आपको। आपको इस समय मैं कर्ता भोक्ता जीव हूं, सत्य हूं, यथार्थ हूं, वास्तविक हूं, ये आपको जो बोध हो रहा है ना, ये बोध का कारण क्या है पता है? आप वास्तव में कर्ता नहीं है, आप वास्तव में भोक्ता नहीं है। आप ये कर्ता भोक्तापना आपकी पारमार्थिक नहीं है। जन्म मृत्यु सुखी दुखी कर्ता भोक्तापना आपकी पारमार्थिक स्वरूप नहीं है, फिर भी आपको यही लग रहा है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं यथार्थ हूं, मैं वास्तविक हूं, यह आपको लग रहा है। ये लगता क्यों है? क्योंकि आप प्रतिबिंब हैं और बिंब की सादृश्यता आप में आ गया। बिंब कैसा है तो बोले चैतन्य है, बिंब सत है, चित है, आनंद रूप है और पारमार्थिक सत्य है। उसी का प्रतिबिंब आपके अंतःकरण में पड़कर जीवात्मा चिदाभास खड़ा हुआ है। तो ब्रह्म की चेतनाता की सादृश्यता अंतःकरण में पड़े हुए चिदाभास की भी चेतनाता दिखने लग गया, तो आप भ्रांति से यही ब्रह्म है ये कहने लग जाओगे। और इसी के चलते मैं यथार्थ हूं, ब्रह्म की यथार्थता पारमार्थिक सत्यता अंतकरण में पड़े हुए चिदाभास में भी तत्सादृश्यता दिखाई पड़ गया, तब आपको लगने लगा कि मैं कर्ता भोक्ता, मैं पारमार्थिक हूं, यथार्थ हूं, सत्य हूं, यह आपको लग रहा है। तो ये सादृश्यता है, इसीलिए आपको मैं कर्ता भोक्ता चिदात्मा पारमार्थिक हूं ये भ्रांति हो रही है। अब जब अनुसंधान करने लग जाओगे तो भ्रांति का कारण हट जाएगा। तब आपको जब कूटस्थ का बोध होगा तो बोले अरे ये अकर्ता अभोक्ता है कूटस्थ, सच्चिद आनंद तो कूटस्थ है, मैं तो केवल खामोखाम मैं ही सच्चिद आनंद मानता रहा। ये तो आपको चिदाभास के रूप में सच्चिद आनंद वेदांत नहीं बोलता है कभी भी, कूटस्थ के रूप में आपको सच्चिद आनंद कहता है। अब ये भ्रांति क्या होती है? जैसे दर्पण के मिरर के सामने आप खड़े होते हो तो आपकी आकृति और दर्पण के अंदर दिखने वाले पदार्थ की आकृति मिलती है, तब आपको भ्रांति होता है कि दर्पण के अंदर जो दिख रहा है वो बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही है, सांसू छे। हाँ, आ तो सांसू छे, महाराज मुख छे, है मेरा ही मुख है और तुम्हारे मुख तो गर्दन के ऊपर है, वहां कहां से आ गया? तो सादृश्यता, यही तो भ्रांति का सब कारण होता है। यस्यैव स्फुरणम् सदात्मकमसत् कल्पार्थकम् भासते। तो इस भ्रांति को फिर तोड़ेंगे कब? ये भ्रांति हटेगा कब? असत कल्प पदार्थ भी सत के रूप में प्रतीत होता है। किसके चलते? बोले जिस सत के स्फुरण के चलते असत पदार्थ भी सत के तरह प्रतीत होता है। अब यह भ्रांति टूटेगी कैसे? साक्षात तत्वमसीति वेद वचसा यो बोध इत्याश्रितान। ये भगवान शिव के बारे में, गुरु मूर्ति के बारे में कहा गया है, दक्षिणा मूर्ति के बारे में ये कहा गया है। आश्रितान, ये आश्रितान माने अपने आश्रय में रहने वाले को, परमात्मा के आश्रय में रहने वाले को कभी भी जगत सत्यत्व की भ्रांति नहीं हो सकती है। बात समझे, दीपक के आश्रय में रहने वाले को कभी भी रस्सी में सर्प की भ्रांति नहीं हो सकती है। दीपक के आश्रय में रहने वाले को ध्यान देना, प्रकाश के दीपक के आश्रय में रहने वाला या चलने वाले को कभी भी रस्सी में सर्प की भ्रांति नहीं होगी। होगी, दीपक के आश्रय में रहने वाला का मतलब क्या हुआ? दीपक को घर छोड़कर वो बाहर जाएगा नहीं। जो दीपक के आश्रय में रहेगा तो दीपक को साथ में लेके जाएगा ना। ध्यान देना, दीपक के आश्रय में रहने वाला व्यक्ति दीपक को छोड़कर कभी जाएगा अकेले? प्रकाश के आश्रय में रहने वाला व्यक्ति प्रकाश को छोड़कर कहीं वो गमन करेगा? हाँ? नहीं करेगा। और जब प्रकाश को छोड़कर गमन नहीं करेगा, जब भी कहीं भी जाएगा तो प्रकाश को लेकर ही जाएगा, तो उसको रस्सी में सर्प की भ्रांति होगी। रस्सी में सर्प की भ्रांति किस कारण से होता है? प्रकाश के अभाव के कारण। बात समझ गए कि नहीं? जिस प्रखर प्रकाश की आवश्यकता थी, वह प्रखर प्रकाश के अभाव के चलते न होने के कारण रस्सी में सर्प की भ्रांति हो गई। और प्रकाश के आश्रय में रहने वाला तो प्रकाश साथ में लेकर चलेगा, तब जब भी वो प्रकाश का प्रयोग होगा, साथ में है प्रकाश, इसलिए प्रकाश का प्रयोग करेगा तो रस्सी रस्सी के रूप में ही प्रतीत होगा, सर्प के रूप में भ्रांति होगी नहीं। जब रस्सी रस्सी के रूप में प्रतीत होगा तब तो अधिष्ठान का ज्ञान होते ही अध्यास तब वस्तु बाधित होता है। जब अधिष्ठान का ज्ञान हो जाएगा तो अध्यास का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा, भ्रांति का अवसर ही प्राप्ति नहीं होगा। तो प्रकाश के आश्रय में रहने वाले को रस्सी में सर्प की भ्रांति नहीं होती। इसी प्रकार से गुरु के आश्रय में रहने वाले को या परमात्मा के आश्रय में रहने वाले को कभी भी जगत सत्यत्व की भ्रांति नहीं हो सकती। हाँ, क्योंकि गुरु बार बार उसको बार बार उसको बोध कराते रहेंगे, सावधान, ख्याल रखना। ले जी, गुरु के सामने जाकर कहो कि गुरुदेव, मैं पहले बहुत जवान था, बहुत सुंदर था, अभी तो गरड़ा हो गया, बुढ़ा हो गया, गाल की खाल भी सिकुड़ने लग गई, अब तो मैं कुरूप हो गया, क्या करें महाराज? है? तो गुरु क्या कहेंगे? ये तो होना ही था। यही कहेंगे कि नहीं, बोलो? ये तो होना ही था। होना था मतलब, अरे बाबा, ये तो पदार्थों का धर्म है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयति विनश्यति। अभी तो गाल के खाल सिकुड़ गए, अभी तो पांव कांपने लग गए, अभी हाथ कांपने लग गए, नेत्र मंद हो गए, कान मंद हो गए, दांत गिर गए, है? अभी तो यही है ना। अरे देखते जाओ, एक दिन ऐसा आएगा ये सब नष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। गुरु ये कहने में संकोच नहीं करेगा आपके सामने, संकोच करेगा? ये वस्तु एक दिन नष्ट हो जाएगा ये कहने में गुरु संकोच करेगा? तुमको अत्यधिक प्रिय है, और जितना भी प्रिय हो वे, प्रिय होने पर भी गुरु ये कहने में संकोच नहीं करेगा कि जो तुम्हारे लिए अत्यधिक प्रिय है वह एक दिन नष्ट होने वाला है, ये कहने में गुरु संकोच नहीं करेगा। हाँ, और यदि ये संकोच करता है तो वो गुरु ही नहीं है। आ? इसका जो अत्यधिक प्रिय पदार्थ वस्तु है वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, ये थोड़ा अप्रिय शब्द है, होना तो नष्ट है, फिर भी मैं कह दूं तो इसको अच्छा नहीं लगेगा, अप्रिय है करके वो संकोच करेगा तो फिर गुरु ही नहीं होगा। वो तो यथार्थ बात सामने रखना, गुरु का लक्षण है, जो जैसा है उसको उसी रूप में रख देना, ये गुरु का लक्षण है। शिष्य यदि सीपी को बोरा में भर के ले आवे, ध्यान देना मैं दृष्टांत तो दूसरा दे रहा हूं, मैं दृष्टांत तो ज्यादा दिया करता हूं। शिष्य सीपी को बोरा में भर कर ले आवे और गुरु के सामने कहे कि गुरु महाराज मेरे पास एक बोरा चांदी है, मैं एक बोरा चांदी लेके आया हूं, अब तो मैं मालो माल हो गया हूं, क्योंकि उसको सीपी में चांदी की भ्रांति हुई, बोरा भर कर ले आया। गुरु ने जाकर देखा कि एक बोरा चांदी है, जरा दिखाओ, एक बोरा है तो थोड़ा सा हमको भी दे दे, आश्रम में अन्न क्षेत्र में काम आ जाएगा, हॉस्पिटल में काम आ जाएगा, गुरुकुल में काम आ जाएगा, वृद्धाश्रम में काम आ जाएगा, है थोड़ा तो तू हमको भी दे देना, देगा कि नहीं है? गुरु आप कहते हो तो थोड़ा देंगे भाई, ज्यादा तो नहीं देंगे है? गुरु मांगेंगे तो देना पड़ेगा ना भाई, अन्न क्षेत्र में मांगेंगे, हॉस्पिटल के लिए मांगेंगे, पुस्तक प्रकाशन करने के लिए मांगेंगे, हैं? स्वाध्याय क्लास चलाने के लिए मांगेंगे, गुरुकुल चलाने के लिए मांगेंगे, सबका सब तो नहीं देंगे, थोड़ा तो देंगे ना। एक बोरा चांदी रखा है, जरा देखा तो सही। गुरु गए, आओ जी, अंदर रखा था उसने, क्योंकि चोरी ना हो जाए, गुरु जी को ले गया अंदर, बोरा का मुंह खोला और दिखा दिया, देख लो ये पूरा बोरा भरा पड़ा है चांदी से। अब गुरु को पता चल गया ये तो पूरे के पूरे सीपी है, चांदी नहीं है, और शिष्य क्या कह रहा है, चांदी है। गुरु क्या कहेंगे, ये सीपी है, इसमें 1% भी चांदी नहीं है, ये पूरा का पूरा ये समुद्र के सीपी है, मिट्टी के भाव भी ये बिकने वाला नहीं है, ये जानते हुए यदि मैं ऐसा कह दूंगा तो इसको अप्रिय लगेगा, तो गुरु मौन हो जाएगा, सारू थयो राजेश, संभाल के रखना काम आएगा, गुरु ये कहेगा। वो गुरु कह रहा, जब तुम मेरे काम नहीं आ रहा तो तेरे किस काम का है? अरे बेटा किसने कह दिया ये चांदी है? बोले नहीं नहीं मैंने कहा, तूने किस आधार से कहा? देखो चांदी जैसा चमकता वैसे ये चमक रहा था, इसलिए चांदी है, क्या अंतर है? बोले बेटा चांदी तो इधर भी चमकता है उधर भी चमकता है, ये तो केवल इधर चमकता है उधर नहीं चमकता, उधर देख उधर तो नहीं चमक रहा है। बोले ये चांदी नहीं है, मिथ्या है, चांदी की तरह प्रतीत होना ये मिथ्या का लक्षण है, प्रतीत न होना ये मिथ्या का लक्षण नहीं है, प्रतीत होना परंतु चांदी नहीं है, चांदी की तरह प्रतीत होता है परंतु चांदी नहीं है, ये मिथ्या का लक्षण, ये मिथ्या है, निकाल कर बोरा फेंक दे बाहर। हाँ तो यदि आज गुरु इस प्रकार से अप्रिय उसको बोल देंगे, अप्रिय क्या है, ये चांदी नहीं है कहना ही उसके लिए अप्रिय है कि नहीं, लेकिन आज उसको अप्रिय है बोल देंगे तो वो समझ जाएगा, अप्रिय होने पर भी ये चांदी नहीं है करके निश्चय करके बैठ जाएगा, नहीं तो जिस समय उसको पैसे की जरूरत पड़ी और बोरा कंधे में लेकर जौहरी मार्केट सराफा बाजार जाएगा तो उस समय जौहरी भी उसको ये अप्रिय बोलेगा कि नहीं है, तो वहां जौहरी 10 वर्ष के बाद जौहरी अप्रिय सुनाएगा, तो आज ही सुना दो ना अप्रिय, और क्या। अरे भाई मरने वाला तो गुरु आज ही कह देगा ना, ये शरीर मरने वाला है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 वर्ष के बाद डॉक्टर कह देगा कि नहीं कि ये शरीर मर चुका है, बोलो कहेगा कि नहीं है? कभी न कभी एक दिन न एक दिन डॉक्टर कह देगा कि नहीं ये मर चुका है, नाश हो गया है, कहेगा कि नहीं। और वो 10 वर्ष के बाद वो अप्रिय जब उस डॉक्टर से सुनना है तो वही आज गुरु से सुन लो कि ये शरीर नाश होने वाला है, खत्म हो गई बात। अब इसको कहीं अप्रिय मानते हो तो मान लो, लेकिन उस अप्रिय से तो प्रिय है, उस अप्रिय से तो प्रिय है ये है। आश्रितान यो बोधयत्याश्रितान, आश्रितान माने अपने आश्रय में रहने वाले को ये गुरुमूर्ति क्या करते हैं, साक्षात तत्वमसीदि वेद वचसा यो बोधयत्याश्रितान। और देखो गुरु तो अप्रिय नहीं बोलते और अच्छा प्रिय बोलते हैं, साक्षात तत्वमसी, यह तो मैं कर्ता भोक्ता जीव जन्म मृत्यु वाला मानते हुए चल रहा था, गुरु तो यहां तक कह देते हैं कि तू तो न जन्मने वाला है, न मरने वाला है, न बूढ़ा होने वाला है, न रोगी होने वाला है, न भोगी होने वाला है। भोग और रोग तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को छूते हैं, रोग किस शरीर को छूता है, स्थूल शरीर को, और भोग कौन से शरीर को छूता है, सूक्ष्म शरीर को। भोग रोग तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर में है, और तू तो ये शरीर से परे है। साक्षात तत्वमसी महावाक्य के द्वारा सीधे ही तू यह है, जैसे दशमस्तमसी करके संत बताता है, दसवां तू है। और तू कह रहा था कि दसवां मर गया, साथी मर गया, और 10 के 10 रो रहे हैं, किस लिए है, 10 के 10 रो रहे हैं किस लिए, दसवां मर गया करके। और जिस दसवें को मर गया कह रहे हैं वो 10 के 10 दसवां हो सकते हैं गिनती के क्रम में है, गोल बैठकर जहां से भी गिनती शुरू करोगे दसवां वही है, लेकिन गलती क्या कर रहे हैं, वह गोलाई को गिन रहा है क्योंकि गिनने वाला खड़ा है, गलती तो ये हो रहा है ना, गोल में बैठे हुए को तो गिन रहा है,

0: तरह आज सत्य है, इसी तरह हमेशा सत्य रहेगा। पति भी यही मानता था कि हमेशा सत्य रहेगा, पत्नी भी यही मानती थी कि हमेशा रहेगा है? और जब गिनती शुरू की तो घट गया, तो फिर रोना पड़ा कि नहीं? अरे भाई, तुमने शरीर को गिन लिया था इसलिए रोना पड़ा है? आत्मा को गिन लिया होता तो रोना नहीं पड़ता है? और दूसरी बात, हम तो ये कह रहे हैं कि आत्मा को गिन लिया होता, आत्मा तो गिनती का वस्तु है ही नहीं है? तो रोने लग गए। महात्मा ने कहा कि तुम किस आधार से कह रहे हो? बोले हमने गिना है, 10 आए थे, अब यहां 9 है। गिना है? महात्मा ने आंख घुमा ली, 10 के 10 खोपड़ी वही है, फिर तुम कह रहे हो 9? कैसे गिना, बोलो। तो सबके सब 9 बैठ गए लाइन में, गोलाई में, और तो गिनने वाला था वो लाइन से बाहर आ गए। देखिए गुरुजी, हम गिनती में गलती नहीं करते हैं, सेंट जेवियर्स स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हैं? हम कोई गलती नहीं करते हैं गणित में। देखिए 1, 2, 3, 4 लाइन के सिर को हाथ रखते हुए गिन रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 देख लो कहां है 10वां। गुरु ने उसके सिर में रखा, ये 10वां। मूर्ख, अपने सिर में क्यों नहीं हाथ मारता है? तेरा सिर नहीं है? सिर में हाथ रख के गिनना है तो तेरे में भी तो गर्दन के ऊपर सिर है, ए सब करके रखना 10। अरे बात ठीक कह रहे, 10वां कहीं कुछ नहीं मरा है, देख लो। बड़ा रोते रहे, तूफान हो गया, अब गो खत्म। साक्षात तत्वमसीति वेद बोच सा यो बोध यत्याश्रितान, अपने आश्रय में रहने वाले को गुरु मूर्ति परमात्मा क्या करते हैं, तू ही सत अस्तिभाति प्रिय, ये सच्चिद आनंद अद्वितीय, जिस ब्रह्म को तू खोज रहा है वही ब्रह्म तू है करके बोधयति, उस माया निद्रा से जगा देते हैं। माया निद्रा से जगा देते, माया की भ्रांति से उसको जगा देते हैं। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेद वचसा यो बोधयत्याश्रितान्, यत् साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणा मूर्तये। इस बोध का फल क्या है? गुरु जब जगा देता है, उस जगने के बाद जगने का फल क्या है, अनुभूति क्या है, इस बात को ये तीसरे लाइन से स्पष्ट करेंगे, उसको कल देखेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम
1: नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Dandi Adigal Nayanar, presented by Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. भक्तों, अभी हम सुनेंगे और एक नायनमार की कहानी जिनका नाम दंडी अड़िगल है। दंडी अड़िगल का जन्म तिरुवारूर में हुआ था। वे जन्म से ही अंधे थे। बाहरी नेत्रों से वंचित होने के अभिशाप को कमी न मानकर वे सदा सेवाकारी में लगे रहते। उन दिनों शिव मंदिर की पश्चिमी दिशा का सरोवर फट जाने से बेकार हो गया था और अन्य धर्मों को मानने वाले ने वहां बस्ती बसा ली थी। दंडी अड़िगल ने

0: तालाब को गहरा करने का निश्चय किया। तालाब के बीच में से जहां मिट्टी पट गई थी किनारे तक थोड़ी थोड़ी दूर पर डंडे गाड़े और रस्सी बांध ली। बीच तालाब से मिट्टी खोदकर टोकरी में भरकर अपने सिर पर लादकर रस्सी से बाहर आते और मिट्टी को फेंकते, फिर टोकरी लेकर तालाब में फिर से चले जाते। पूरी निष्ठा के साथ वे तालाब को गहरा करने का काम अकेले ही कर रहे थे। अन्य धर्मावलंबी उन्हें इस काम से रोकते, पर वे सुनी अनसुनी कर देते थे। वे लोग इनका उपहास करने लगे, अरे तुम आंखों से अंधे ही नहीं कानों से भी बहरे हो। प्रतिदिन के उल्लाहनों से उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। एक दिन उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया, देखते रहो मैं दृष्टि प्राप्त करूंगा और तुम दृष्टिहीन हो जाओगे। उन लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कहा, यदि तुम्हारी दृष्टि लौटेगी तो हम लोग इस बस्ती को छोड़कर चले जाएंगे और वापस यह स्थल शिव भक्तों के लिए हो जाएगी। उसी रात शिव ने स्वप्न में आकर दंडेड़िकल को दर्शन दिए और उनसे कहा, कल तुम्हारी आंखों की दृष्टि लौटेगी, तुम्हारी सेवा की निंदा करने वालों की दृष्टि खो जाएगी। उधर राज्य के नरेश को स्वप्न में प्रभु आदेश मिला और भक्त के दूर के कष्ट को दूर करने के लिए नरेश स्वयं दंडेड़िकल के पास आए। नरेश के आग्रह से जब दंडेड़िकल ने जल में डुबकी लगाई तो उनके नेत्रों की ज्योति लौट आई। उधर निंदक लोगों की नेत्र ज्योति समाप्त हो गई, उन्हें प्रण के अनुसार उस स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। 20वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित इस तथ्य को हमारे पूर्वज हजारों साल पहले अपने जीवन में अनुभव कर चुके थे। जिस मिट्टी खोदने के काम को नेत्रयुक्त अनेक मजदूर मिलकर करते हैं, दंडेड़िकल ने अकेले ही प्रारंभ कर दिया था। दूसरों ने उन्हें अंधा कहकर खिल्ली उड़ाई, तब भी उनके मन में हीन भावना नहीं व्यापी। कोयम्बतूर जिले के कोंगू समाज में पुराने समय में विकलांग बच्चों के पालन पोषण का अच्छा प्रबंध होता था। ऐसे बच्चों में रुचि लेने वाले परिवार को निश्चित आर्थिक सहायता भी मिलती थी। दुख की बात यह है कि ऐसी सुंदर व्यवस्था अब लुप्त हो रही है। आज पूरे भारत में विकलांगों की समस्या से जूझने, उन्हें सहायता देने, प्रशिक्षण देने आदि की योजनाएं केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही है। इससे समाज के एक दुर्लभ वर्ग को समाज का उपयोगी सदस्य बनाने में सफलता मिल रही है। यही है दंडेड़िकल की कहानी।
1: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai music and Thirumurai discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: सेवे नित्यं श्रीकरं त्वत्पदाब्जं। हे भगवान, अब मैं सारे संसार और सांसारिक पदार्थों को छोड़कर नित्य निरंतर श्रीकरं, श्री माने श्रेय, करोत्येति श्रीकर, कल्याणकार कारक, हम जीवों का कल्याण करने वाले आप श्रीकरम, तत्पदाब्जम, आपके चरण रूपी कमल, अब्ज अब्ज, अप माने जल, तस्मात् जाता अब्ज कमल, चरण कमल, आपका जो चरण कमल है क्या है? बोले श्री करम, हमारे कल्याण करने वाला है, इसलिए मैं अब नित्य निरंतर कल्याणकारी आपके उस चरण कमल का सेवे मैं अब सेवन करूंगा। अभी तक संसार और सांसारिक विषयों का सेवन करने के कारण मैं भवाटवी में पड़ गया था, भवसागर में पड़ गया था, भवाटवी में पड़ गया था, भवारण्य में पड़ गया, भटक गया था। आपके कृपा से अंधकार छंट गया, प्रकाश आ गया, अब मैं भटकूंगा नहीं। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शुक्ल यजुर्वेद बांदे दिनी शाखा रुद्र संहिता रुद्रीयम में पहला अध्याय में संकल्प शिव संकल्प सूक्त है, छह ऋचा का, छह मंत्रों का शिव संकल्प सूक्त है जो हम लोग रोज पाठ करते हैं। यज्जाग्रतो दूर मुदैति दैवन तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमन ज्योतिषां ज्योतिरेकन तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे शिव, मे मनः, आपकी कृपा से मुझे एक मन नामक तत्व अनादिकाल से, मेरे अस्तित्व काल से ही मुझे प्राप्त हुआ है। आपने बड़ी कृपा करके मुझे एक मन नाम का साधन दिया है, लेकिन मैं उस मन से जुड़कर अनादिकाल से अभी तक अशिव संकल्प करता रहा। शिव माने परमात्मा आत्मा, अशिव माने अनात्मा संसार विषय। मैं उसी विषय का चिंतन करता रहा, विषय का सेवन करता रहा, विषय भोग करता रहा, और विषय अशिव होने के कारण अनादिकाल से आज तक मैं संसार में भटकता रहा। अब मेरा वह मन सर्वथा शिवा संकल्प करने वाला होवे, अशिव संकल्प कभी न करे, विषयों का चिंतन कभी न करे, निर्विशेष परमात्मा का ही चिंतन करे। जो कि जागृत में दूरम उदयति, मन जागृत अवस्था में कहां से कहां नहीं पहुंचता, दूर से दूर चला जाता है, दूरम उदयति, अमेरिका जाता है, लंदन जाता है, बोलो पहुंच गया कि नहीं, अमेरिका पहुंचा कि नहीं, बोलो लंदन पहुंचा कि नहीं, आपके बहू बेटे अमेरिका लंदन में होंगे, फट से पहुंच गया वो, है बैठे कि नाम लिया कि पहुंच गए, वो देखो नाम लिया पहुंच गया, कितनी जल्दी पहुंचता है। दूरम उदय थी, ये जागृतो दूरम उदय थी, तदु सुप्तस्य तथैवेति, स्वप्न में भी पता नहीं कहां कहां पहुंच जाता है। दूरंगमन ज्योतिखान ज्योतिरेकन, वो स्वयं अंधकार में भी पहुंच जाता है, उसको अंधकार बाधित नहीं करता है वो, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश, उसके पास प्रकाश है, उसको अंधकार बाधित नहीं करता। तन्मे मनम, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प अस्तु, अब नित्य निरंतर शिव संकल्प करे, अशिव संकल्प न करे। माध्यम देनी शाखा शुक्ल यजुर्वेदीय, ये मंत्र है शिव संकल्प सुक्त के, ऐसे छह सुक्त हैं। लगभग वही बात यहां शंकराचार्य जी कहते हैं, सेवे नित्यम श्रीकरम त्वत्पदाब्जम। आपके चरण की विशेषता यह है कि जिसने आपके चरण की स्मरण की उसका कल्याण हुआ है, इसलिए श्रीकर है आपका चरण नित्यम सेवे। भावे मुक्तिर्भाजनम राजमौले, हे राजमौले मैं इसी जन्म में मुक्ति का भाजन पात्र बनूं, मुक्ति मोक्ष प्राप्त करूं। आद्या अविद्या, अविद्या क्या है? अविद्या के चार अंग हैं, अविद्या के चार अंग हैं। महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट लिखा है और इसी तरह जगद्धर भट्ट ने भी उसकी व्याख्या की है, अविद्या के चार अंग हैं। अनित्य में नित्य बुद्धि अविद्या का प्रथम अंग है, अपवित्र में पवित्रता बुद्धि ये दूसरा अंग है, अनात्मा में आत्मबुद्धि या विद्या का तीसरा अंग है, दुख में सुख बुद्धि या विद्या का चौथा अंग है। समझे नहीं? अनित्य में नित्य बुद्धि, अविद्या का पहला अंग है, असूची में सूची बुद्धि, अपवित्रता में पवित्र बुद्धि यह अविद्या का दूसरा अंग, अनात्मा में आत्मबुद्धि अविद्या का तीसरा अंग, और दुख रूप में सुख बुद्धि यह अविद्या का चौथा अंग। पंडित जगद्धर भट्ट ने लिखा है स्तुति कुसुमांजलि में, अनित्ये नित्यासम असुचि निशुचित्वव्यसनिता अनात्मन्यात्मस्थाम् अतमहपि दुःखे सुखमिति। आधे लाइन में ही अविद्या की व्याख्या कर दी है। चतुर्ता चतुर्धा दुर्भेद्याम्, चार भेद वाली यह अविद्या कैसी है? दुर्भेद्यम अवितर अविद्याम, यह देखो दुर्भेद्याम अविद्याम, ये साधारण प्रयत्न से, साधारण उपक्रम से, साधारण अभ्यास से ये चार अंग वाले अविद्या को तुम भेदन नहीं कर सकते, इसलिए दुर्भेद्याम। चतुर्धा दुर्भेद्याम अवितरम अविद्याम परिणताम हताशेष स्वाभम अभिदति मूलम भवतरो। और ये अविद्या क्या है? चार अंग वाले अविद्या भवतरो, ये संसार वृक्ष के रूप में खड़ा है, चार अंग वाला ये अविद्या यही मूलम भवतरो, ऊर्धमूलम दशाकम अश्वत्तम प्राप्रभ्य छंदांसि यस्य पर्णानि स्तंभेद समेदपि अगस्त्य मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधी मनुष्य लोके न रूप मस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चाद्र न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंगता रूपी अस्त्र के अलावा इस संसार वृक्ष को काटने में और कोई साधन उपयोगी नहीं है, असमर्थ है। असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा ही यह संसार वृक्ष को काट सकते हैं। यह संसार वृक्ष खड़ा हुआ कहां से? तो बोले यही जो चार अंग वाला अविद्या है, यह मूलम भवतरो संसार वृक्ष का मूल है, इसी में यह संसार वृक्ष खड़ा हुआ है। तो हे शिवा, आपकी कृपा से वो मूल उच्छेद हो गया भाई है। आद्या विद्या ऋतगता निर्गता सीत, क्योंकि विद्या ऋद्या ऋतगता तत्प्रसादा, आपकी कृपा से इस संसार वृक्ष के मूल को काटकर उखाड़कर फेंकने में समर्थ विद्यैव तन्नास विधौ पटीयसे, रामगीता। उस मूला विद्या को उखाड़ के फेंकने में ब्रह्म विद्या ही सक्षम है, उसके अलावा अन्य न कर्म तज्जम सविरोध मीरितम। कर्म, योग, उपासना, भक्ति, ये सब उस मूला विद्या को उखाड़ के फेंकने में समर्थ नहीं, विद्या ही समर्थ है। और ब्रह्म विद्या वही समर्थ है और नहीं। विद्यैव तन्नास विदौ पटीयसे, न कर्म, क्यों महाराज कर्म क्यों नहीं समर्थ? बोल तज्जम, उसी अविद्या से उत्पन्न हुआ हुआ कर्म क्या अविद्या को उखाड़ के फेंकने में समर्थ होगा? हैं? बोलो, मिठाई खा खाकर शुगर बढ़ा है और शुगर को घटाने में मिठाई समर्थ होगी? बोलो, हैं? जिस मिठाई खा खाकर शुगर बढ़ गया है, उस शुगर को नष्ट करने के लिए मिठाई समर्थ है? नहीं है। तब क्या उसके विपरीत, मीठा के विपरीत कड़ुआ खाना पड़ेगा? नीम पत्ता खाओगे तब जाकर उसको घटाने में समर्थ होगा। इसलिए नीम पत्ता ही, करेला ही उस मिठाई खाकर पैदा हुआ हुआ शुगर को घटाने में समर्थ विरोध है ना, क्योंकि मिठाई के विपरीत करेला उसका विरोधी है। इसलिए कर्म अविद्या को नाश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अविद्या से ही तो कर्म पैदा होता है। अज्ञान हुए बिना कर्म होगा? अविद्या के बिना कर्म होगा? और आगे कहते हैं शंकराचार्य जी, हमारे मोहनीश के हिसाब से दिन में 400 श्लोक होनी चाहिए। चिंता न कर बेटा, पूरा करूंगा। है? एक छक्का लगे तो पूरा हो गया ना? है? अभी तो 2 बॉल बाकी हैं, 2 दिन बाकी है ना? हैं? श्लोक कितनी बाकी हैं अब? 9। तो 2 छक्के में तो गए। एक दिन में 6 श्लोक कर देंगे तो गया, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। चिंता न करो बेटा। दूरीकृतानि दुरितानि दुरक्षराणि दौर्भाग्य दुख दुरहंकृति दुर्वचांसि सारं त्वदीय चरितं नितरां पिबन्तम् गौरी समामिह समुद्धर सत्कटाक्षी। संबोधन है गौरी शाह। हे गौरी के पति, गौरी के स्वामी, गौरी के ईश्वर, गौरी शाह, गौरी के मालिक, दूरक्षराणि उसका क्षरण करना बहुत कठिन है। दूर दुखेन क्षरयितुं शक्यः तानि दूरक्षराणि कानि दुरितानि। जीवन के अनेक जन्मों में अर्जित पाप समूह, अनेक अनेक जन्म से उपार्जित पाप समूह दुरितानि है दूर क्षराणि। इन दुरितों को तुम साधारण कर्म से नाश नहीं कर सकते हो। अनेक जन्म में हुए किए हुए पाप को एक जन्म में एक बार हरिद्वार गंगा गोता लगाने से सब नष्ट हो जाएगा, समझते हो तुम? इस भ्रांति में नहीं रहना। अनेक जन्म में अर्जित जो पाप समूह है वह एक दिन के एकादशी करने से नष्ट हो जाएगा, इस भ्रांति में नहीं रहना। तीन तीन वर्ष तक किया हुआ पाप पुरुषोत्तम महीना एक महीने में व्रत करके नष्ट करूंगा, ये भ्रांति में नहीं रहना भाई। है फिर भी तुम कर रहे हो, करो, कुछ तो कुछ कम होगा। कुछ तो कुछ कम होगा, नहीं होगा ये बात नहीं है, नत्र शास्त्र गलत हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं समझ लेते कि वो पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे, कुछ कम होंगे। इसलिए करते रहो, नहाते रहो गंगा जी। है बारह वर्षीय कुंभ मेला आ रहा है, गोदावरी नहाने के लिए चले जाना। करते रहो लेकिन ये निश्चित कर लो, हिसाब लगा लो, तुम खुद ही, हमको कहने की जरूरत नहीं है, खुद ही हिसाब लगा लो। दैनंदिनी में हमारे कर्म में पाप कर्मों की संख्या ज्यादा होगी कि पुण्य कर्मों की संख्या, स्वयं कैलकुलेशन कर लो भाई, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति यही कहेगा कि मैंने तो कोई पाप किया नहीं है। अरे तुम्हारे कहने से होगा तुमने पाप नहीं किया? तुमने पाप किया कि नहीं किया ये तो तुम खुद जजमेंट हो गए, न्यायाधीश बनना चाहते हो आप नहीं है। शास्त्र क्या कह रहा है, गुरु क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहा है? गुरु शास्त्र आदि जजमेंट करें तो फिर मान लेना, नहीं तो अपने आप मैंने कोई पाप नहीं किया करके बैठकर आत्मसंतुष्टि हो सकती है, इससे पाप कम नहीं होने वाले, आत्मसंतुष्टि हो सकता है। तो फिर कौन नष्ट करेगा? दूरक्षराणि दुरितानि दूरीकृतानि तत्प्रसादात्। आपकी ही कृपा से मैं उन पाप समूहों को हटाने में समर्थ हुआ। और आगे क्या किया? दौर्भाग्य दुख दुरहंकृत दुर्भचांसी। तो अब मेरा दुर्भाग्य भी चला गया, वो दौर्भाग्यम और तज्जन्य दुखम और तत्संबंधी अहंकृति अहंकार दुर्वचांसी सब दुरितानी। ये दुरितानी के विशेषण है, सब दुर्भाग्य दुरितानी दुख दुरहंकृति दुरितानी दुर्वचांसी दुरितानी सब दूरीकृतानी दुरितानी दुरक्षराणि। सारम त्वदीय चरितम नितराम पिबंतम, नितराम नित्य निरंतर सर्वथा भावेन त्वदीय चरितम चरितामृत, नित्य निरंतर आपके दिव्य चरित्र रूपी अमृत के पान करने पर, सारम त्वदीय चरितम नितराम पिबंतम, माम मिह समुद्धरा सत्कटाक्षे, तो मैं सर्वथा दुरितों से मैं मुक्त हो चुका हूं, इसीलिए माम समुद्धरा इह, इसी जन्म में यही मैं जहां पर हूं, यही जिस योनि में हूं उसी योनि में इह माम समुद्धर सत्कटाक्ष, माम समुद्धर सत्य रूपी दृष्टिपात करके मेरा उद्धार करो, सत्कटाक्ष सद ब्रह्म सत तत्व, तो कटाक्ष माने दृष्टिपात, आपकी सत्कटाक्ष होगा तो मेरा उद्धार होगा, इसी जन्म में आप मुझे कृपा करके मेरा उद्धार करें, क्योंकि मैंने जो करना था तो वो तो कर दिया आपकी कृपा से, दुरक्षराणि नष्ट करना बहुत असंभव था आपकी कृपा न होती तो, लेकिन वो आपकी कृपा से सभी दुरितानि दुरक्षराणि नष्ट कर दे, दूरी कृतानि, इसलिए अब मेरा उद्धार करिए। महर्षि दुर्वासा जी ने परसंभु महिमना स्तोत्रम की रचना की है, जैसे पुष्पदंताचार्य जी ने शिव महिमना स्तोत्र की रचना की, वैसे परशुराम ने संभु महिमना स्तोत्रम करके रचना की है, तो उसमें बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है। जातिर्लज्जा निजकुलमद सर्वसंसितरार्धिर देहांता स्वकृत दुरीत द्वंद्वपाशो अभिमान, यही दुरीत है जातिर, जाति का अभिनिवेश, लज्जा निज कुल मद, जिस कुल में पैदा हुए हैं उसी कुल का अभिनिवेश, निज कुल मद, तुम क्या समझते हम ब्राह्मण कुल के, तुम क्या समझते हमारे बाप दादे मूर्ख नहीं थे पढ़े लिखे थे, यही मद कुल निज कुल मद है। अरे भाई हमारे पिता बड़े अफिसर थे, अरे तेरे पिता अफिसर थे तो क्या है, लोग जो है ना अपनी अहम को अन्य के कर्म के साथ जोड़कर कहते हैं, महाराज हमारे पिताजी हमारे दादाजी बड़े शिव भक्त थे, नित्य निरंतर घर में रुद्राभिषेक करते थे, भागवत पढ़ते थे, वेद पढ़ते थे, पूजा करते थे, और हमारे पिताजी और दादाजी ने कितने पुस्तकें अलमारी में भर के रखी है, पेन अभी देखने जाओ बहुत पुस्तकें हैं। अरे बाबा ये सब तो ठीक है, तू क्या कर रहा है ने? तेरे दादा पूजा करते तू क्या कर रहा है, तेरे बाप दादा जो है भागवत पढ़ते थे तू क्या कर रहा है, तेरे दादाजी जो है रुद्राभिषेक करते थे तू क्या कर रहा है, मैं ये कर रहा हूं तो नहीं बोलता, कहता क्या है दादाजी करते थे, बाबा जी करते थे, मेरी मां करती थी, अरे तू क्या कर रही है? नहीं? एक बहन कहने लगी, महाराज मेरे पिताजी मेरी मां हमारे घर में कहीं ना कहीं से संत खोज खोज कर ला के बुला के खाना खिलाते रहते थे। अक्सर रोज कोई ना कोई साधु संत भोजन के लिए आया करते थे। अरे भाई तू क्या कर रही है? हैं? तेरी मां ने तो किया, तू क्या कर रही है? हैं? तो यही निज कुल महम जा तेरे लज्जा निज कुल मद सर्व संसित्वरार्धि देहांता। अपने शरीर में अहम बना, स्वकृत दुरित द्वंद पासो अभिमान सर्वे हेते। ये जितने भी थे ये सब क्या है? मम विनिहतास सर्वे हेते मम विनिहतास। आज वे सब मेरे जीवन से नष्ट होके चले गए। सर्वे हेते मम विनिहतास महावाक्य सूर्य। आपके द्वारा प्रदत्त महावाक्य रूपी प्रचंड प्रकाश के सामने ये सब क्या हुआ? ज्योतिपुंजई किम परमहम देव भद्रम समी है, ये सब चले। तो आपके द्वारा दिया गया दिव्य उपदेश महावाक्य रूपी सूर्य के प्रकाश के चलते ये सब जाति कुल अभिमान मद घमंड ये सब के सब दुरितानी दूर अक्षरानी दुरितानी दूरीकृतानी हटा दिया। बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया था। कहते हैं रात्रि में सूर्य न होने के कारण तारों का प्रकाश का भी सहारा लेना पड़ता है। अब कभी कभी चंद्रमा के प्रकाश का भी सहारा लेना पड़ता है। मोमबत्ती का टॉर्च का ये सब विकल्प हैं, सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब दिन में प्रचंड सूर्य का प्रकाश उदित होता है उसके सामने सभी आलंबन निरस्त हो जाते हैं, अनुपयुक्त हो जाते हैं। तो महावाक्य जन्य ज्योति पुंज के चलते हे शिव उस प्रकाश के सामने सब दुरितानि दूरीकृतानि खत्म हो गए। और आगे क्या कहेंगे कल करेंगे, चिंता नहीं करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।

0: ശിവായ. You're listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: तो किया तो किया, लेकिन आज के नए संदर्भ में तो ये सोचना होगा कि अब आखिर ये जो हमारे प्राचीन दृष्टि को ध्यान में रख करके हम निश्चय करें ईश्वर के स्वरूप का, या इस समय जो ये तथाकथित लोग जो ईश्वर के बारे में कुछ तर्क देते हैं उनके तर्क के बल से हम ईश्वर के स्वरूप का निश्चय करें। आज हम इस मोड़ पर खड़े हुए कि हमको क्या करना है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और आचार्य के द्वारा जो कठोर तपस्या के बल से जिन्होंने ये संशोधन किया है, और तर्क युक्ति प्रयुक्ति के द्वारा वैदिक वाक्य को और ज्यादा मजबूत और दृढ़ करके जो हमारे सामने ये निष्कर्ष रखा है, क्या हमको उनकी रक्षा करनी है, या ऐसे ही जो जिसके जीवन में कोई सदाचार नहीं है, कोई विचार नहीं है, जीवन जीने की शैली में कोई नियम कानून नहीं है, ऐसे लोग जो है बैठे बैठे ईश्वर के बारे में तर्क युक्ति प्रयुक्ति बताए और कहे कि ईश्वर नहीं है, तो क्या हमको उनके ये सिद्धांत की रक्षा करनी है, ये हमको सोचना है। लेकिन हम अब विडंबना की बात यह भी है कि हमारे यहां जो ईश्वर के बारे में जो प्रमाण वाक्य है उनका इतना अप्रचार है, प्रचार नहीं क्या है, अप्रचार है, अप्रचार है या अपप्रचार है, ये दोनों बातें हैं। अप्रचार भी है यानी कि हम लोग वैदिक सनातन धर्मावलंबी होते हुए भी हम अपने ये प्रमाण को नहीं जानते कि वेद क्या है, श्रुति क्या है, स्मृति क्या है, सूत्र क्या है। हम लोग यही समझते हैं कि ये श्रुति स्मृति और सूत्र ये इनका विचार करना ये केवल साधु लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है। साधु लोग जो है वो इस बारे में विचार करते हैं, न जाने क्या विचार करते हैं, हम लोगों को पता नहीं है, इसलिए हम अपने को उससे अलग और जुदा कर लेते हैं। इसलिए हम नहीं जानते वेद क्या है, श्रुति स्मृति सूत्र क्या है। आज पूछा जाए हमारे बच्चे ही हमको यदि पूछे कि आप ये ईश्वर ईश्वर कर रहे हैं, आप कथा में जा रहे हैं, ये पूजा उपासना कर रहे हैं, आखिर क्या है बताइए, ईश्वर क्या है, तो आप क्या कहेंगे, आपके पास कोई जवाब है क्या? यहां जो आ रहा है वो तो बताएंगे, यहां उनको तो पता है ईश्वर क्या है, प्रमाण क्या है, क्या जवाब देना है, लेकिन ये तो एक आम सनातन धर्मावलंबी की एक आम बात है, सबके लिए विचारणीय विषय है। क्योंकि आजकल बात ये भी है कि हमारे शास्त्रों का जो अभ्यास है उनका भी स्वरूप और उनका प्रचार ऐसा सिकुड़ता जा रहा है ताकि हमारी उसको और ध्यान ही नहीं जा रहा, इसलिए हम न जाने कैसे अवैदिक धर्म का समर्थन जाने अनजाने में कर रहा है। इन बातों का हमको ख्याल नहीं रहता कि हम तो यही सोचते हैं कि हम ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक के पीछे हम अवैदिक धर्म का समर्थन तो नहीं कर रहे, ये हमारे सामने उसके लिए कोई मापदंड यदि हो तब तो हम समझ सकते हैं, यदि नहीं तो हम जाने अनजाने में अवैदिक धर्म का समर्थन करके हमारे पर हमारे मूल पर हम कुठाराघात करते जा रहे, आज समय ये है। इसलिए स्वाध्याय अवश्य जानना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए ताकि हम जाने हमारे ऋषि और मुनि और आचार्य ने जो क्या कहा है। देखे यदि आप ईश्वर के बारे में हम कहें तो भगवान भाष्यकार ब्रह्मसूत्र भाष्य के दूसरे सूत्र में ये कहते हैं कि ये जो संसार है उनकी उत्पत्ति परमात्मा से हुई है। जन्माद्यस्य यतः, जन्म स्थिति भंग यतः, जिससे उनको कहते हैं ब्रह्म परमात्मा। तो जैसे अभी कहा कि कोई कहे कि कैसे पता चले ये सारे संसार की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है। भगवान शंकराचार्य जी वहां ऐसे अकाट्य तर्क बता रहे हैं और कहते हैं देखो ये जो है ईश्वर के बिना इस प्रकार के संसार की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। पहले ही कहते हैं अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्तस्य। देखिए आप इस संसार में पाते हैं कि कर्ता और भोक्ता के स्वरूप को अनेक कर्ता, कोई ऐसे है जो केवल कर्ता ही करता है, कोई ऐसे है जो केवल भोक्ता ही भोक्ता है, वो कर्ता करता ही रहता है भोक्ता भोक्ता ही रहता है। ये नियमन किसने किया कि ये कर्ता है ये भोक्ता है? क्या अपने आप हो गया? अनेक कर्तृ भोक्तृ से संयुक्त ये संसार है। फिर आगे कहा मनसापि अचिंत्य। भगवान भाष्यकार कहते हैं चार तर्क के द्वारा कहते हैं मनसापि अचिंत्य, यानी कि जिसका चिंतन मन से नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे अजूबे इस संसार में है जिसका चिंतन मन से नहीं कर सकते। अब बताइए अब वो अपने आप हो सकते हैं क्या? फिर एक तर्क ऐसा बताया है प्रतिनियत देश काल क्रिया फलाश्रयस्य। देखिए इस संसार में आप ये पाएंगे कि देश भी नियत है। देश देखिए और संसार के और देशों की बात मत करें, भारतवर्ष की बात करें। भारतवर्ष में हम देखते हैं कि जितने प्रांत है वहां पर आप जमीन को देखेंगे तो कहीं भी आपको एक जैसी नहीं दिखेगी। कश्मीर में जाएंगे वहां जो जमीन है वहां वो जो खेती होती है वो आप कन्याकुमारी जाएंगे तो वहां आप वो खेती नहीं होगी। आप ऐसे पश्चिम भारत में जाइए वहां जो होता है वह आप पूर्व में जाएंगे तो वहां वो नहीं होगा। सब जगह ये जो भेद है देश में वो देश के भेद जो है क्या अपने आप हो गए? प्रतिनियत देश। फिर काल लीजिए जो काल के भेद है। देखिए भामतीकार ने बढ़िया सुंदर दृष्टांत बताया कि आप काल का भेद देख सकते हैं कि देखिए कहीं एक पक्षी है जैसे कोकिला ही है। कोकिला का शब्द क्या इस समय आप सुन सकते हैं? उनका एक नियत काल है, वो नियत काल में ही आप जो है वो कोकिला का रव सुन सकते हैं, अब नहीं सुन सकते। कस्तूरी मृग ले लीजिए, वो जो है सर्वत्र उपलब्ध है क्या? क्या कारण है आखिर कि वो एक देश विशेष में ही रहते हैं? प्रतिनियत देश काल क्रिया जो है, क्रिया भी दिख लीजिए जो वैदिक क्रिया है वो जो प्रस्तोता उद्गाता अध्वर्यु इत्यादि जो कर रहा है वो यजमान नहीं कर रहा, जो यजमान कर रहा है वो प्रस्तोता आदि नहीं कर रहे। और फल के बारे में ले लीजिए, फल के बारे में जो हम आज देखते हैं कि क्या सबको एक जैसा कोई फल मिलता है क्या? तो एक जैसा फल क्यों नहीं मिलता है? आखिर इस फल के भेद में भी कोई ऐसी शक्ति होगी कि जो सबको जो है फल भिन्न भिन्न रूप से दे रही है, वो कौन फल देते हैं? क्रतौ सुप्ते जागृत त्वमसि फल योगे क्रतुमताम। महिम्न स्तोत्र में हम लोग पढ़ते हैं क्व कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधन अमृते। ऐसा पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं कि क्रतौ सुप्ते, आपने कर्म तो कर लिया, यज्ञ कर लिया, पूर्णिमा से लेकर अमावास तक यज्ञ कर लिया, उसके उनके भी काल नियत है यज्ञ कर्म के भी, तो वो कर लिया ठीक है। अब वो एक काल आ जाता है समाप्त हो जाता है, चाहे अमावास्या से लेकर पूर्णिमा तक किया तो पूर्णिमा को समाप्त तो हो ही गया, वो जीवन भर तो वो चलता नहीं है कर्म। हमको बहुत सारे कर्म करने रहते हैं, एक को निपटा दिया दूसरे को निपटा दिया तीसरे को निपटा दिया वो समाप्त हो गया। तो आखिर ये कौन ध्यान रखता है ये कर्म किए हुए कर्म कहां रहते हैं जो हमको कालांतर में फल देते हैं? यहां तक कि कुछ कर्म ऐसे भी है जो इहलोक में भी फल देते हैं हमको कि चलो दो साल के बाद पांच साल के बाद या वृद्धावस्था में, जैसे हमने युवावस्था में इकट्ठी की हुई जो संपत्ति है धन संपत्ति है जो बैंक में, वो उनका उपयोग जैसे हम वृद्धावस्था में करते हैं तो वो बैंक वाले आपको वृद्धावस्था में पेंशन के रूप में देते हैं कि नहीं देते? क्यों देते हैं? वो कहते हैं आपने यहां हमारे वहां जमा कर रखा है, इसलिए हम दे रहे। जो जमा नहीं किया होता तो अब कोई ऐसा व्यक्ति पहुंच जाए कि हमको दीजिए, तो वो बैंक वाले कहेंगे पासबुक दिखाइए। यदि दिया है तो लो, नहीं तो कहां से मिलेगा। इसलिए कहते हैं यदि हम कर्म किया है तो कर्म कहीं ना कहीं जमा तो रहता होगा। कहां रहता है? हमारे अंतकरण में। क्या कभी देख सकते हमारे अंतकरण के? न जाने कितने करोड़ों जन्मों के संस्कार भरे पड़े हुए हैं। यहां तक बंदर के भी संस्कार है। हम बंदर भी कई बार बने हुए, एक बार नहीं, कई। जितने भी जीव है उन सब के संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए। भगवान भाष्यकार छांदोग्य उपनिषद में एक जगह बहुत ही हर बात इस बात की सिद्धि करते हैं कि एक व्यक्ति के अंतकरण में सारे संसार में जितने जीव है उन सब के संस्कार पड़े हैं। और संस्कार उसी के होते हैं जो बार बार क्रिया होती है। एक बार करने का संस्कार नहीं पड़ता। ये आप लोग तो सबको पता है कि हम कुछ यही एक बार सुनते हैं तो याद रहता। तो संस्कार और अभ्यास वो कई बार करना पड़ता है। तो कई बार बंदर बने होंगे ना, तभी तो अभ्यास होंगे, तभी तो अंतकण में रहे होंगे। इसलिए वो अंतकण में रहते हैं। और इनका ध्यान कौन रखते है? वही ईश्वर रखता है। इसलिए पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं कि भगवान ये कर्म तो जो है वो सुप्त हो जाता है फिर, लेकिन आप वो जगते हैं, ध्यान रखते हैं। देखिए हम लोग सो जाते हैं तो हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है? शरीर को कौन चलाता है पता है? अच्छा, प्राण चलता रहता है कि वो भी सो जाता है? प्राण वो तो जो खर्राटे सुन रहा है उनको पता है कि ये कौन सो रहा है। तीसरे कमरे में आवाज आती है, नहीं है? वो तो सो रहा है मस्ती से, उनको पता है नहीं कि अब मेरा क्या हो रहा। किंतु प्राण जो है जैसे चलता रहता है और इस शरीर की रक्षा करता रहता है। भगवान ने ये ऑटोमेटिक व्यवस्था तो बना नहीं रखी क्या? हमको हाथ हिलाना है तो इच्छा करनी पड़ती है, पैर उठाना है तो इच्छा के बल पर, बोलना है तब भी वो इच्छा के बल पर, यदि देखना है सुनना है चाहे ज्ञानेन्द्रिय से, कोई भी ज्ञानेन्द्रिय से हमको ज्ञान करना है, कर्मेन्द्रिय से कर्म करना है, तो हम पहले मन में इच्छा करते और इच्छा इस विषय नहीं होती जिस विषय का हमको ज्ञान होता है, और ज्ञान होता है इस विषय में इच्छा होती है, और इच्छा के अनुसार हम कृति करते हैं। नैयायिक लोग कहते हैं कि कोई भी कर्म के पीछे ये तीन कारण होते हैं, ज्ञान, चिकित्सा और कृति, तब जाकर के आपको कर्म फल मिलता है। तो अब बताइए, अब प्राण के लिए क्या आपको ये करना पड़ता है? प्राण अपने आप चलता ही रहता। क्या अभी क्या कभी आप ये कहते हैं कि हमको अब श्वास लेने का काम है, अब हमारे पास हम दूसरा काम नहीं कर पाएंगे, ये श्वास लेने का काम है, अब हम श्वास नहीं लेंगे तो हमारा शरीर छूट जाएगा, इसलिए पहले हम श्वास लेते रहे। अब बताइए श्वास लेते रहे तो और काम कब करेंगे? इसलिए भगवान ने ये जो ऐसी व्यवस्था बना रखी है, अब ये व्यवस्था को कौन बना सकता? क्या ईश्वर के सिवा और कोई ये संभव है क्या? कुछ जो है अवैदिक धर्मावलंबी कहते हैं जीव तो है। अब जीव की बात ले लीजिए, जीव की शक्ति कितनी है? जीव को यह भी पता नहीं हमारे शरीर में क्या हो रहा। डॉक्टर को भी पूछ लीजिए तो वो भी जो है मशीन का सहारा लेकर के वो बताते कि तुम्हारे शरीर में यह हो रहा, उनको भी पता नहीं है। उन्होंने जो है अपने 25 साल जो है अध्ययन में लगाए, 25 साल तक उन्हें रात दिन वो जो है बड़े बड़े इतने इतने थोथे पढ़े हुए है, उनको भी आप कहे कि मेरे को यह हो रहा है तो पहले आप मशीन के सामने आ जाइए। उनको वो भी मशीन के ऊपर विश्वास करता है। वो जो जड़ मशीन है जो बोलती नहीं है चलती नहीं है मशीन, वो भी मनुष्य के द्वारा बनाई हुई है, उनमें देख करके आपको ये रिपोर्ट कर देते कि आपको ये हो रहा। अब ये जो भगवान के द्वारा जो बनाई चीज है जिसके अंदर प्रामाण्य का विचार करके बताया गया है, उसके बारे में हम कहते हैं कि न जाने कैसा लिखा होगा, न जाने ईश्वर होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो डॉक्टर बता देते तो वो सब होता है। वो कहते हैं कैंसर हो गया तो हम बड़े चिंतित हो जाते हैं, क्या देखा कैंसर? लेकिन वो बता रहा है, हम चिंतित हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर के बारे में या धर्म के बारे में या इस प्रकार के अध्यात्म के बारे में बात आती है तो हमारे पल्ले ये बात नहीं पड़ती है। ज्योतिष कहता है कि तुमको सातवें स्थान में शनि है, तो हम क्या कहेंगे? होगा ही होगा। वो कहेंगे कि खर्च करना पड़ेगा, आपको सब ठीक ठाक हो जाएगा, जल्दी कीजिए, जरा हम जो भी कहेंगे वो देने के लिए तैयार है। और वो वेद के पास जाएंगे तो वो क्या कहेंगे, वात पित्त और कफ में वैषम्य आ गया है, बस हम आपको दवा देते हैं ठीक हो जाएगा। और जो अखबार में बड़ी बड़ी वो आती है ना कॉलम में, और सब एड्रेस भी अंदर दिया जाता है, चारों ओर से जो निराश व्यक्ति हमारे पास आए ऐसा लिखा हुआ पाएंगे, हमारे पास कोई भी व्यक्ति निराश नहीं गया, हम कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसमें पूरा लिस्ट हुआ रहता है कि ये काम हम कर सकते हैं। वहां भी जाएंगे तो वो क्या कहेंगे कि आपको भूत का प्रवेश हो गया आपके शरीर में, प्रेत का प्रवेश हो गया, वो निकालना पड़ेगा। ये बहुत चल रहा था कुछ समय पहले, आजकल तो थोड़ा कम हो रहा। तो ये सब जो है हम उसके ऊपर तो विश्वास करते हैं, किंतु ये भगवान के वचन के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। इसलिए आप लोगों को ये पता जरूर चल गया कि स्वाध्याय की क्या आवश्यकता है। स्वाध्याय यदि हम करेंगे तो हम ये सारी बातों का जवाब संसार में किसी को भी दे सकते हैं। इसलिए स्वाध्याय अभ्यसनम, और इसी को भगवान ने वाणी का तप कहा, स्वाध्याय का अभ्यास यानी कि वेदाभ्यास। वेदाभ्यास का अर्थ ये नहीं कि आप ऋग्वेद आदि शास्त्र ही पढ़े, ये जो ये अभी वेदांत परिभाषा चल रही है उनका अभ्यास वो वेदाभ्यास है। क्योंकि ये वेदांत क्या है, ये तो वेद है, और उनकी परिभाषा में क्या होगा, आप आम ले आए, बढ़िया से बढ़िया आम ले आए, तो क्या आप आम पर तोड़ने गए थे क्या, आम ले आए बाहर से बढ़िया दिख रही है, एकदम पीली पीली सी सुगंधी भी बढ़िया आ रही है, और आप उसके अंदर फिर इसको वो चप्पू से वो संवारेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर से बढ़िया रस निकलेगा। वो रस कहां से आया, आम से। यदि आम केसर कैरी का है तो वो वो जो आम आम्रफल है उसमें भी कौन सा रस आएगा, वो आपस का आएगा नहीं, तो आखिर ये नियंत्रण है कि नहीं इसमें भी। तो वैसे ही ये जो परिभाषा में क्या आएगा, जो उसका वेद का रस है वो इसमें आएगा। वो पुराणों में नहीं कहते निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक्र मुखाद अमृतम द्रव संयुतम इत्यादि जैसे कहते हैं कि नहीं, बस वो दृष्टांत समझ लीजिए। यहां पर भी वो इस तरह ये है, तो ये वेद का अभ्यास और इनको वाणी का तप कहते हैं, समझ में आए, ये है वाणी का तप। और संक्षेप से मैं आपको मानस तप बता दे रहा हूं। मानसम तप क्या है, तो देखो कहिए, कहते हैं भगवान मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्ये तत् तपो मानसम उच्यते। कहते देखो मन का प्रसाद, मन का प्रसाद क्या, प्रसाद यानी कि स्वस्थता, मन स्वस्थ हो, चिंता या उद्वेग से रहित हो वो कब रह सकता है। आप लोगों ने कभी पाया कि मन स्वस्थ प्रसन्न कब रहता है, कि पाप कर्म करने के बाद या पुण्य कर्म करने के बाद कब रहेगा प्रसन्न। देखिए पुण्य पाप कर्म करने वाला जो है वो पाप कर्म तो कर लेगा, लेकिन वो पाप ऐसा है ना, वो अपने जहन में आता है तो वो स्थिर नहीं रह पाता। पुण्य आता है अपने जहन में तो वो स्थिर रहता है, आपको पता भी नहीं चलता। और पाप जब आता है, क्योंकि है ही वो अस्थिर, वो आएगा तो आपको अस्थिर करेगा ही करेगा, और वो बड़ा भारी है, इसलिए वो आपको उसका भार भी लगेगा। अब भार को आप उठाते हैं तो मन प्रसन्न रहता है या अप्रसन्न रहता है। आप कहेंगे कि भार को फेंको तभी शांति मिलेगी, अब भार उठाते उठाकर जा रहे, उठाना पड़ रहा है, घर में जाकर के ऐसा फेंकते हैं और ऐसे आराम से बैठ जाते हैं कि बस थोड़ी देर आराम कर ले, तो प्रसन्नता कब आएगी? भार कम होगा तब। तो भार तो कई प्रकार के भार है, अब उसमें नहीं जाना है हमको क्या भार है, किंतु इतना समझिए कि मन प्रसन्न रहना चाहिए। वो प्रसन्न कब रहेगा? यदि हम अपने जीवन को स्वस्थ बनाएंगे, शास्त्रानुकूल बनाएंगे। और जैसे ये कहा जा रहा है पीछे, शरीर वांग्मय और सबको ये सम्मिलित करते हुए अपने जीवन

0: के प्रति हम कभी क्रूर न बने, सबके लिए हम सॉफ्ट बने। तो देखिए, इससे जो संसार में शांति फैलेगी वो क्रूरता से कभी नहीं। क्रूरता से परिवार में शांति नहीं फैलती है तो संसार की शांति की जो बात करने वाले तो वो वैसे ही पहले ही अक्रूर होते हैं, और संसार में शांति फैलाने की बात करते हैं। तलवार के बल से कहीं संसार में शांति फैल सकती है क्या? तो अक्रूरता सर्वलोक हितेशित्वम, मन में सर्वलोक के प्रति हितेशीपना हो, वो सौम्यत्व है। और देखिए आगे कहा मौनम। मौनम ये क्या है? मन का तप है। मौनम यानी कि चुप रहना, मौनम यहां नहीं है। आचार्य शंकरानंद जी बहुत सुंदर ढंग से यहां पे लिखते हैं कि मौनम का अर्थ है कि आप एक महीना तक, दो महीना तक, छह महीना तक कुछ बोले नहीं, वो मौन नहीं है। वो यदि मौन कोई यहां पे तप किया कहा यदि जाए तो कहते हैं वो तो पशु भी नहीं बोलते। तो क्या पशु को तप का फल मिलेगा क्या? ऐसा आचार्य शंकरानंद जी ये गीता की टीका लिखते समय ऐसा यहां लिखते हैं, कहते हैं मौनम का अर्थ है श्रवण मनन निधि ध्यासन करना। मनन मुनिर भावम मौनम। मुनि का भाव क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार मौनम का अर्थ है मनन। मनन किसका? जिसका हम ये जो श्रवण कर रहे हैं उनका मनन, ये है मौन। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं है। संसार में प्राय ये माना जाता है ये मौन रह रहा है बड़ा तपस्वी है, ये नहीं। मौनम का अर्थ है मनन करे, ये मन का तप है। देखिए फिर कहा आत्मविनिग्रह। आत्मविनिग्रह क्या है? मन। आत्म का अर्थ है मन, उनका विनिग्रह या विषयों से उनका प्रत्याहार। और भाव संशुद्धि। भाव संशुद्धि क्या है? व्यवहार में जो है माया राहित्यम, व्यवहार हम ऐसा करें, हम वस्तुसत व्यवसाय करें। व्यवसाय का अर्थ पता है? व्यवसाय क्या है? जो बोल दिया वो बोल दिया, चाहे वो घाटा हो चाहे लाभ हो, अब बोल दिया सो बोल दिया। व्यवसाय ऐसे ही चलता है आजकल, इसलिए व्यवसाय को नहीं बोलते, बिजनेस बोलते। अभी बोला अभी फूक, इसलिए कहीं विश्वासार्ह नहीं है। व्यवसाय का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में व्यवसाय शब्द का प्रयोग किया, व्यवसायत्मिका बुद्धि। भगवान भाष्यकार वहां अर्थ करते हैं व्यवसायत्मिका अर्थ करते हैं निश्चय आत्मिका। एक जो निश्चय वो निश्चय, देखिए व्यवसाय का स्वरूप यही है, जो व्यवसाय करते हैं वो जानते हैं कि निश्चय एक बार बोल दिया वो बोलने पर ही व्यवसाय चलता है। आजकल तो चाहे लिख करके दो तब भी वो फाड़ के फेंक देंगे कि मैंने तो तुमको कहा ही नहीं। ये व्यवसाय का स्वरूप हो गया। तो व्यवसाय में माया राहित्य तो वह है भाव संशुद्धि। इति एतत्, ये सब मन के तप है। तो मैंने आपको ये बताया गीता में तप का स्वरूप, कि शरीर का तप क्या है, वाणी का तप क्या है और मन का तप क्या है। हम लोग संसार में जिस प्रकार की प्रसिद्धि से जो हम ये तप को जानते हैं, ये भगवान की दृष्टि से तप का स्वरूप ये है। आप सब लोग ये गीता के 17वें अध्याय में देखें, और भगवान ने आगे सात्विक राजसिक और तामसिक भेद बताए हैं, उन भेदों में से हम सात्विक कोटि का तप करते रहे और अपने जीवन का कल्याण करें, यही शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत।
1: हरिओम। पूज्य महाराज जी के पुण्यचरणों में वंदन करते हैं। ऐसे समझे तो 3 दिवसीय, क्योंकि बीच में भी एक स्व की हमें पहचान महाराज जी द्वारा हुई, और अभी 2 दिवस हमने तप के बारे में महाराज जी से सुना। भारत के एक बड़े विद्वान सर्वप्रथम विदेश की धरती में गए थे, और पहला शब्द उन्होंने बहुत ही अच्छे फिलोसोफर्स और दुनिया भर के सुप्रसिद्ध व्यक्ति के बीच में जो उन्होंने उद्बोधन किया वह था माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अभी यह हिंदुस्तान में तो बहुत ही मामूली रीत से मेरे भाइयों बहनों की बात होती है, और वहां जब ये बोला गया तो कई समय तक तालियों से उनका स्वागत हुआ, जो भारत की धरती से पहले संत वहां गए थे। कारण